नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूहों को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहा 3 दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाला भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी

0: मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के सहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने संबंध में अधिसूचना जारी की। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उसमें अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली सरकार आज से एक महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की भी शुरुआत करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जन सुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 4 वर्ष पहले नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को भारत लाया गया था। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। 52 चीतों में से 49 कोनो राष्ट्रीय उद्यान और 3 गांधी सागर अभयारण्य में है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhumi in New Delhi this morning. Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The 3-day conference and exhibition being held from today is being organized on the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policymakers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain. Bharatiya Janata Party will launch a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan beginning today. The initiative is designed to commemorate Prime Minister Narendra Modi's birthday today and celebrate his completion of 25 years of public service as a head of government. This includes his 13 years as Chief Minister of Gujarat and 12 years as Prime Minister of India. To mark the occasion, a Seva Sankalp Abhiyan will be launched from his hometown Varnagar in Gujarat today. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel will flag off a Varnagar to Varanasi bike rally as part of the celebrations. Delhi government will organize four major programs in the national capital today on the occasion.

0: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டு ரசித்தது கேட்டாலை இனிக்கும் முகநூல் வழி நேயர் விருப்பம். நேயர்களே, இன்னும் சில நொடிகளில் புதுடெல்லி யஷ்வபூமியில் இந்திய செமிகான் மிஷன் சார்பில் நடைபெறும் செமிகான் இந்தியா 2026 தொடக்க விழாவில் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கலந்து கொண்டு ஆற்றும் உரையினை நேரடியாக டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: नीलम मलकानिया और कौशिक रॉय।
2: नमस्कार। नई दिल्ली के यशो भूमि में आज सेमिकॉन इंडिया 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय आयोजन है जो 17 तारीख से यानी आज से शुरू होकर 19 सितंबर तक चलेगा। आज इसका उद्घाटन है, माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री जी उपस्थित जनसमूहों को और साथ ही इस आयोजन से जुड़े हुए लोगों को संबोधित भी करेंगे। आकाशवाणी दिल्ली से आप आयोजन का विवरण सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आप सभी का स्वागत करती हूं। हम आपको बताना चाहेंगे कि सेमिकॉन इंडिया 2026 सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि यशोभूमि में 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में 600 से ज्यादा प्रदर्शक और 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भाग ले रही हैं, जो अपनी मौजूदगी से भारत में सेमिकॉन जो परंपरा है, जो हमारा प्रयास है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी मजबूती प्रदान करेंगे। 150 से अधिक जाने माने वक्ता अपने अनुभव और ज्ञान साझा करेंगे। 6 देशों के पवेलियन और 12 राज्यों के पवेलियन भी इस दौरान होंगे। इनके साथ ही स्टार्टअप शोकेस होगा, छात्रों के लिए हैकाथॉन, कर्मचारियों और तकनीकी प्रतिभाओं के विकास से जुड़े पवेलियन होंगे, साथ ही महिला फोरम भी होगा। और इस विशेष कार्यक्रम में जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन यानी इन 6 देशों की उपस्थिति है। इनके प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं और 12 राज्यों के बूथ, स्टार्टअप मंडप और नवाचार प्रदर्शनी भी है, जो लगातार सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। विशाल जनसमूह इस दौरान उत्साह से भरा हुआ भारत में सेमीकंडक्टर परंपरा को लगातार बदलते हुए, आगे बढ़ते हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति मजबूत करते हुए देख रहा है।
3: Namaskar, good morning and welcome to this very special broadcast. Today we are bringing you live and direct Semicon 2026 from Yashobhumi in New Delhi. The theme of this year's Semicon 2026 is From Silicon to Systems, India is Building a Semiconductor Powerhouse. And we all know that semiconductor plants are already operational, that is Micron's and Kane's at Sanand in Gujarat, and India has a long-term strategy for developing sustainable semiconductors and display manufacturing facilities and semiconductor design ecosystem in the country. And Neelam, today we see the Honorable Prime Minister, and on behalf of Akashwani and Prasar Bharati Parivar, we convey our respectful birthday greetings to the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. And today also is Vishwakarma Jayanti. We extend our greetings to all our listeners. India is going to be one of the largest semiconductor manufacturing countries in the coming years. India already has the Semiconductor Mission, which is driven by the Indian government in collaboration with various industry associations, research organizations and educational institutions. It operates under the guidance of the Ministry of Electronics and Information Technology, MeITY, and other relevant government bodies. India Semiconductor Mission is crucial for strengthening India's position in the semiconductor market, which is expected to reach $63 billion by 2026 end. With these initiatives, India is seeking to build a self-reliant electronics ecosystem, lessen its reliance on imports, and establish itself as a significant contributor to the global semiconductor supply chain.

0: पार्टनरशिप का प्रतिनिधित्व करते हुए ASML से आमंत्रित प्रतिनिधि और वक्ता ने गुजरात में चल रहे अपने प्रोजेक्ट्स की बात की, साथ ही टाटा इंडस्ट्रीज के साथ जो साझेदारी में कार्य किया जा रहा है उसका उल्लेख भी किया। हम आपको बताएं कि इस समय यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में आज उद्घाटन सत्र चल रहा है। 3 दिन तक ये आयोजन चलेगा और इस वर्ष की थीम है सिलिकॉन टू सिस्टम बिल्डिंग द इकोसिस्टम, यानी हम किसी एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरा एक इकोसिस्टम, एक व्यवस्था जो है उसे विकसित कर रहे हैं। साथ ही इसमें जो देश हैं, अन्य देश जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके साथ भी साझेदारी है और इस समय इस आयोजन में विदेशी प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन, यानी 6 देशों के प्रतिनिधि यहां पर हैं और भारत के विभिन्न राज्यों के बूथ, स्टार्टअप मंडप, नवाचार इस दौरान प्रदर्शनी के रूप में विभिन्न लोगों के सामने दिखाए जा रहे हैं कि क्या कार्य भारत में हो रहा है और किस दिशा में हम और आगे बढ़ेंगे।
1: Yes, indeed. And as we mentioned earlier, that Shri Ashwini Vaishnav, the Minister for Electronics and Information Technology.
2: Shri Narendra Modi ji ka bhi janmadin hai. हम सब मिलके माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, सेमिकॉन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देश के कई कई दशकों तक विकास के लिए जरूरी है। फॉर मेनी डेकेड्स इंडिया वॉन्टेड टू हैव अ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बट ओनली under the visionary leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, we could build this foundation of the foundational industry. In the Semicon 1.0, we could make that beginning. We started with a very measured and a very calibrated program. The program which was focused on making sure that the industry can set the base in our country. And the focus was very much on getting the right talent, making sure that the ecosystem builds in our country. That was the beginning. That is the foundation we have been able to lay in the first 12 years of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's leadership of this country. Now we have to build the building over this foundation. I'll talk very briefly about the next round of Semicon, the Semicon 2.0. Semicon 2.0 will build the semiconductor industry over 6 pillars. Pillar number 1 is design. Semicon 1.0 mein we had lots of startups trying to see how we can design the chips. We had good success. More than 105 startups could participate in it, and about 20 of them got VC funding of about 800 crore rupees. But that was just the beginning. This time our ambition is much bigger. We would be targeting at least 200 startups and companies which design chips in India across the spectrum of semiconductor requirements. The pillar number 2 is machines and materials. We have so many ecosystem partners present here, and I'm very happy to see more than 28 countries participating in this conference today. Every aspect, whether it is capital equipment, whether it is maintenance facilities, whether it is chemicals, whether it is gases, every part of the ecosystem is part of the Semicon 2.0. And that's where I recall 5 years ago when we started this program, Prime Minister very clearly told us, guided us, don't think short term, think long term. Don't think fab, think ecosystem.

0: So this augurs really well for our young talent pool. And the minister mentioned that the investments that have been promised by the various leading global semicon industry players, they are going to make India indeed a global powerhouse, and it will have a multiplier effect in having more advanced technologies, as well as it will create huge, huge employment opportunities for the youth of India.
1: जी बिल्कुल. और अब जो चिप है उसे हम ये नहीं कह सकते कि एक छोटा सा उपकरण है जो किसी एक खास क्षेत्र तक सीमित है. ये कारों से लेकर ड्रोन्स तक, विमानों तक, एमआरआई मशीनों तक, उपग्रहों तक, सभी में लगा होता है. और माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा इस समय यहाँ पर एक औपचारिक अनावरण किया गया है, उद्घाटन किया गया है यहाँ पर. और CDIL
0: Semiconductors plant has been inaugurated, and also the Shuchi Semicon, and this is a virtual inauguration by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi.
1: Ji, aur jo upasthit jan samuh hai is samay Kartal Dhwani se is pal ka swagat karta hua, yahan par chhaviyan dikhai ja rahi hain alag alag in kshetron se judi hui, aur is tarah se Semicon 2026 ka udghatan satra jo hai bahut kuch apne aap mein samete hue hai, aur sath hi हमें ये बताता हुआ कि सेमीकंडक्टर जो है वो एक तरह से अब बुनियादी उद्योग बन गया है, क्योंकि ऑटोमोबाइल से लेकर स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्र तक लगभग हर बड़ा उद्योग चिप्स पर निर्भर करता है और चिप बनाने वाली फैक्ट्रियों से निकले उत्पादों पर निर्भर करता है. इस वजह से जितना सेमीकॉन इंडस्ट्री जो है वो मजबूत होगी, उसका विस्तार होगा, उतना ही उससे जुड़े हुए उद्योग भी उभरते रहेंगे और वो भी सशक्त होते रहेंगे. और हम क्योंकि विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में चिप से भला हम कैसे दूर रह सकते हैं जो कि हमारे हर उपकरण का हिस्सा अब होने जा रही है. हम सिर्फ मोबाइल की चिप एक छोटी सी जानते हैं, लेकिन अब चिप हर उपकरण में शामिल. और यहाँ एक तरह से अभिनंदन किया जा रहा है, आभार प्रकट किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का.
0: एंड अ मेमेंटो हैज बीन प्रेजेंटेड टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्विनी वैष्णव. एंड एज यू राइटली मेंशन नीलम दैट दिस इज इंडीड अ वॉटरशेड मोमेंट फॉर इंडियाज जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत, बिकॉज द India built chips are really going to play a leading role in the world of semiconductors, and that is what everything is now based on, these small chips which are part of our mobile, our television, even our transportation ecosystem.
1: जी बिल्कुल. और मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, साथ ही निवेश का हब बनाने का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का देश को, इसने एक पूरा इस तरह का इको सिस्टम तैयार किया है, एक ऐसी व्यवस्था तैयार की है जिसमें अब निवेश भी आकर्षित कर रहे हैं हम, लेकिन साथ ही जिन क्षेत्रों में पहले हम सिर्फ आयात करते थे उपकरण, उन क्षेत्रों में अब हम निर्यातक बनकर उभर रहे हैं, अब हम निर्यात भी करते हैं. और ऐसे में सेमीकॉन की एक पूरी व्यवस्था तैयार करने का जो प्रयास है उसमें अब सिर्फ चिप निर्माण नहीं है, बल्कि चिप डिजाइन से लेकर पैकेजिंग, टेस्टिंग, मशीनरी का निर्माण करना, कच्चा माल देश से ही प्राप्त करना, और साथ ही कुशल कर्मचारी तैयार करना, ऐसे इंजीनियर्स तैयार करना, और जो स्टार्टअप्स जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र से उनको उभरने का अवसर देना, स्टार्टअप से वो यूनिकॉर्न बने और यूनिकॉर्न से वो ऐसी एस्टेब्लिश इंडस्ट्री बने, एक ऐसा उद्योग बने जो निर्यात शुरू करे, ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं साथ ही. और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि हमें छोटा लक्ष्य नहीं रखना है, हमें बड़े लक्ष्य बनाने हैं और उस दिशा में हमें प्रयास भी करना है. और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में शुरुआती अग्रणी देशों में शामिल होने का लक्ष्य रखना चाहिए.
0: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. एंड एज द ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव मेंशन, एंड नाउ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी.
2: थैंक यू. केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, जितिन प्रसाद जी, उपस्थित सभी इंडस्ट्री लीडर्स, सीईओज, डेलीगेट्स, और वर्चुअली हमारे साथ

सैकड़ों यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स के भारत के भविष्य, ऐसे मेरे नौजवान साथियों, यहां उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में आए हुए उत्साहित नौजवानों, देवी और सज्जनों, सेमिकॉन इंडिया का ये पांचवा एडिशन हो रहा है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। विदेश से जो अतिथि आए हैं, मैं उनका भारत में विशेष स्वागत करता हूं। साथियों, आज विश्वकर्मा जयंती का दिवस भी है। मैं सभी देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना गया है। और संयोग देखिए, आज से ही सेमिकॉन इंडिया की शुरुआत हो रही है। एक तरफ हमारी सदियों पुरानी निर्माण की परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन, यही आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की हमारी प्रेरणा भी है। फ्रेंड्स, विकसित भारत बनाने के लिए हर देशवासी एक कमिटमेंट के साथ जुटा है। अगर हम बीते 15 दिनों की ही देखें, सिर्फ मैं 15 दिनों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, तो अंदाजा लगता है कि भारत किस दिशा में, किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी सितंबर में, ठीक 10 दिन पहले, मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ। इसमें एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी के जरिए इंक्लूसिव फाइनेंस पर चर्चा हुई। इसी दौरान भारत में करीब 3000 किलोमीटर का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया। ये मैं सितंबर के 10 दिन की बात कर रहा हूं दोस्तों, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। इससे देश में फ्रेट मूवमेंट तेज होगा, लॉजिस्टिक बेहतर होगा और मैन्युफैक्चरिंग को भी नई ताकत मिलेगी। साथियों, इसी कालखंड में, इसी सितंबर में ही भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है। और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है। यानी एक तरफ भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, दूसरी तरफ दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है।

रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है। साथियों, भारत की इन उपलब्धियों के बीच सेमिकॉन इंडिया का यह आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इसका पहला एडिशन 2022 में हुआ था और तब से हम हर वर्ष मिलते हैं, लेकिन हर वर्ष हमारी चर्चा का विषय बदलता गया है। जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की थी, इसके बाद के एडिशन में बात आगे बढ़ी, अगले एडिशन में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे, फाइल पर साइंस से लेकर शिलान्यास की बातें होने लगी। पिछले साल हमने पायलट लाइन्स और टेस्ट चीफ पर चर्चा शुरू की, कैसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकलने शुरू हुए इस पर बात की, और इस साल हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चिप्स देश और दुनिया के कस्टमर तक पहुंचना शुरू हुई है, और अभी अभी मोहाली और सूरत में 2 और प्लांट्स में कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। मैं उनको भी बधाई देता हूं। फ्रेंड, किसी भी देश के लिए इतने कम समय में यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। ये सेक्टर ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री लगाई और काम पूरा हो गया। इसमें टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज बनाने में दशकों लगते हैं। दुनिया में जहां भी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बने हैं वहां ये पूरा इकोसिस्टम दशकों की मेहनत के बाद तैयार हुई है, लेकिन भारत ने आपके सहयोग से चिप डिजाइन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल इकोसिस्टम, टेस्टिंग कैपेबिलिटी हो, इन सभी पर एक साथ काम किया और सफलता हासिल करके दिखाई है। हमारी इस यात्रा में बहुत बड़े स्टेकहोल्डर्स आप सभी इंडस्ट्री लीडर्स रहे हैं। आप भारत की सफलता के पिलर्स हैं, आप हमारी इस जर्नी के पार्टनर्स हैं। साथियों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है। उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है, और भारत भी

यही कर रहा है। भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा फेज शुरू कर दिया है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग 8 बिलियन डॉलर्स का था, जबकि सेकंड फेज का 13.5 बिलियन डॉलर तक का हमने तय किया है। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चलते हुए हमने इस सेक्टर में और भी रिफॉर्म्स किए हैं। अब इंटरनेशनल कंपनीज भी हमारे स्टार्टअप्स के साथ इंडियन डिजाइन कंपनीज और ओसीआई ओन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। यानी पॉलिसीज हो, फंड्स हो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, आपके प्रोजेक्ट की सफलता के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हर कदम भारत सरकार उठा रही है। साथियों, हमारा प्रयास है कि भारत में फैबलेस कंपनीज की ग्रोथ हो और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का क्रिएशन भी भारत में ही हो। अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बनाने हो, सिलिकॉन फोटोनिक्स को इकोसिस्टम का हिस्सा बनाना हो, एआई एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये सब जरूरी है और इस दिशा में हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। इसके लिए जो फाउंडेशन चाहिए वो तैयारी हो चुकी है। सप्लाई चेन की मजबूती पर भी भारत का बहुत अधिक फोकस है। इसके लिए अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। यहां जो इक्विपमेंट कंपनीज के लीडर्स हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी इसका लाभ उठाने में पीछे मत रहिएगा। केमिकल, गैसेस और मटेरियल्स के लिए, उसके लीडर्स के लिए भी भारत में सुनहरा अवसर उनका इंतजार कर रहा है। हम चाहते हैं कि पूरा इकोसिस्टम एक साथ ग्रो करे। इसके लिए डिमांड पाइपलाइन भी तैयार है। अभी तक 12 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल चुका है और नेक्स्ट फेज में ये दायरा और बढ़ेगा। साथियों, भारत में आप सभी के लिए एक और एडवांटेज यूथ का है, टैलेंटेड स्किल्ड मैनपावर का है। आज हमारे पास इंजीनियरिंग टैलेंट का बहुत बड़ा पूल है। भारत में हजारों इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और भारत हर साल लाखों इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है। एक बार मुझे अमेरिका की कंपनी के सज्जन मिलने आए थे, तो बोले हमारे यहां अगर इंजीनियर्स के लिए भर्ती करना चाहें, उनको बुलाएं, तो एक कमरे में आ जाए, इतने लोग आते हैं। और बोले हिंदुस्तान में बुलाए तो फुटबॉल का मैदान भी छोटा पड़ जाता है। ये ताकत है भारत की। और साथियों, चीप डिजाइनिंग के लिए तो बहुत बड़े पैमाने पर स्किलिंग का काम चल रहा है। अभी मुझे यहां आने से पहले यहीं पर कैंपस में इंडस्ट्री से जुड़े कुछ युवा साथियों से मैंने मुलाकात भी की है, सारे स्टूडेंट्स से। इन स्टूडेंट्स ने मुझे अपनी डिजाइन की गई चिप्स उपहार में दी है। हमारी सरकार

एक लाख इंजीनियरिंग छात्रों को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए ट्रेन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। और अभी आपको बताया गया इसमें से 70,000 से ज्यादा नौजवानों को ट्रेनिंग दी भी दे चुके हैं हम लोग। इतना बड़ा टैलेंट पूल आप सभी के लिए भी एक तरह से गोल्ड माइन से कम नहीं है। साथियों, सरकार के इन प्रयासों के बीच मैं आज युवाओं से भी आह्वान करूंगा, जो यंग टैलेंट्स भारत में रिसर्च कर रहे हैं वे आगे आए, जो युवा विदेशों में रिसर्च कर रहे हैं वे भी भारत में एडवांस टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट से जुड़े। मैं इंडस्ट्री लीडर से आग्रह करता हूं, आप देश में R&D को लीड करें। इसमें इंडस्ट्री का भी फायदा है और भारत की युवा शक्ति को भी इससे ताकत मिलेगी। साथियों, आगे बढ़ती हुई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, आप सभी उनसे परिचित हैं। सालों तक आपकी इंडस्ट्री में लोग ट्रांजिस्टर की साइज की बात करते थे, जैसे जैसे ट्रांजिस्टर छोटे हुए कंप्यूटिंग उतनी ही फास्ट और एफिशिएंट होती गई। आज भी ये सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से इस इंडस्ट्री के सामने कुछ नए सवाल भी खड़े हुए हैं। बीते दो वर्षों में ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट की ग्रोथ 20% से ज्यादा रही है और इस ग्रोथ में बहुत बड़ा AI से पैदा हुई डिमांड का है। यानी आज अगर आप AI पर काम कर रहे हैं तो चुनौतियां सिर्फ ये नहीं है कि चिप के अंदर क्या है, बल्कि चुनौती ये भी है कि इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मेमोरी को प्रोसेसर के और करीब लगाना हो, कई सारी चिप्स को इस तरह जोड़ना हो कि वे मिलकर एक ही सिस्टम की तरह काम करें, बिना किसी डिले के बहुत बड़ी मात्रा में डेटा यहां से वहां पहुंचाना हो, हीट और पावर को मैनेज करना हो, ऐसी अनेक चुनौतियां सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने है। इन चुनौतियों के बीच दुनिया को मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई और भरोसेमंद, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, नई और भरोसेमंद लोकेशंस की भी जरूरत सबसे ज्यादा हो रही है। और भारत, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत इसके लिए खुद को लगातार तैयार कर रहा है। साथियों, आज की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने एक और बड़ा विषय एनर्जी सिक्योरिटी का भी है। AI के लिए जो चिप बन रही हैं, उनका इस्तेमाल AI डेटा सेंटर्स में हो रहा है। इन डेटा सेंटर्स में हजारों हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर एक साथ काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे जैसे AI का विस्तार होगा, कंप्यूटिंग पावर की जरूरत भी उसी गति से बढ़ेगी, और कंप्यूटिंग पावर जितनी बढ़ेगी बिजली की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। इसलिए पावर सेक्टर में निवेश भी बहुत जरूरी है।

0: हमारे प्लांट जहां है वहां पर समय पर बिजली मिले, जरूरत के समय जरूरत की मात्रा में मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत आज पावर सेक्टर में भी बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। बीते दशक में हमारी इंस्टॉल सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 2 गीगावाट से बढ़कर 160 गीगावाट से ज्यादा हो गई है, 2 से 160। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला गया है। हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर भी काम कर रहे हैं। बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। फ्रेंड्स, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। कुछ वर्ष पहले ही हमारे संविधान को 75 साल हुए हैं। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है। और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने है और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। एक बार फिर आप सभी को इस आयोजन के लिए मेरी ढेरों शुभकामनाएं हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi was addressing the inaugural session of Semicon India 2026, and the Honorable Prime Minister received a standing ovation from the people and the delegates who are assembled at Yashobhumi. The Honorable Prime Minister in his speech mentioned that the month of September started on a very positive note for India, with the recording of 7.8% growth rate in the first quarter of 2026. The Prime Minister also mentioned that India is committed to inclusive financial freedom of its citizens. This month also saw the completion of 3,000 kilometers of dedicated freight corridor. Japanese credit agency have upgraded India's sovereign credit rating, and now the world trusts India's success story. He called upon the global giants of the semiconductor industry to partner with OCI companies, as they will be equal partners of the journey towards a Viksit Bharat. The Honorable Prime Minister also mentioned that India has consistently reiterated its position on resilient global supply chains. The Prime Minister said that there are huge opportunities available in India for chemical, gases and materials industry, as India also has a huge talent pool of science, technology, engineering and mathematics. The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi called upon the youth of India to come forward in research and development in semiconductor and showcase their Yuva Shakti. The global semiconductor market grew by 20% in the last decade due to AI, and India is now ready to offer new and trusted locations for the industry. And India is also ready to take on the emerging responsibilities. The Prime Minister mentioned that more than 160 gigawatt of solar power has

0: has been achieved by India. India is also using nuclear energy and it has been open to private players. India is consistently now working on small modular reactors. India is the mother of democracy and we celebrated very recently the 75 years of our constitution. The Prime Minister said that weaponization of supply chains should not be allowed and he called upon the semiconductor industry to play a constructive role in global growth and development towards world peace.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने विदेशी मेहमानों का स्वागत भी किया, विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी और साथ ही सितंबर के माह में जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुए हैं भारत में उनका उल्लेख किया, जिसमें ब्रिक्स सम्मेलन का उल्लेख था, समावेशी वित्त का उल्लेख आपने किया, ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन का उल्लेख किया और ये कहा कि देश पर दुनिया के देशों का भरोसा अब बढ़ता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और ऐसे में भारत की बनाई हुई चिप जो है वो दुनिया तक पहुंच रही हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री जी देश को प्रेरित करते रहे हैं मेक इन इंडिया का उल्लेख करते हुए, फिर मेड फॉर द वर्ल्ड का उल्लेख आपने किया, वोकल फॉर लोकल हमें कहा तो लोकल टू ग्लोबल भी कहा और मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हुए अपने लोकतंत्र के मूल्यों को हम बचाए रखें लेकिन साथ ही आधुनिकता का हाथ भी थामें और इस तरह से विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करें। ले संकल्प सृजन का मन में उम्मीदों से हो भरपूर, धुन के पक्के उस राही से मंजिल है फिर कितनी दूर। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रेरित करते रहे हैं और इसी तरह का प्रेरणा देने वाला आज का ये आयोजन यशोभूमि में जो शुरू हुआ, आज इसका उद्घाटन हुआ है और अगले 3 दिनों तक ये आयोजन चलेगा। आप आयोजन के उद्घाटन सत्र का विवरण आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे। लाइव प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ स्टूडियो में हमारे साथी अनुपम हरियाणवी के साथ मैं नीलम मलकानी, अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण से अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन सत्र का सजीव विवरण। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया और कौशिक रॉय।
3: ஆகாஷ்வாணி புதுச்சேரி நேயர்களே, இதுவரை புதுதில்லி யஷ்வபூமியில் இந்திய செமிகான் மிஷன் சார்பில் நடைபெற்ற செமிகான் இந்தியா 2026 தொடக்க விழாவில் நமது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கலந்து கொண்டு ஆற்றும் உரையினை இதுவரை டெல்லியிலிருந்து நேரடியாக அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.

0: नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन करने के बाद स्वयं भी रक्तदान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खाटू श्याम मंदिर में हवन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लिखित एक लेख साझा किया है। इस लेख में भारत के समावेशी विकास पथ का उल्लेख किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने सरकार की मूल नीति सबका साथ सबका विकास पर बल दिया है। लेख में श्री कोविंद ने बताया है कि कैसे भारत की विकास गाथा उन लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में ला रही है जो पहले अनसुने, अनदेखे या उपेक्षित थे। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से 11 सितंबर के हमलों के पीड़ितों को याद करने का आह्वान किया।
1: इस दलदल को सुखाना बेहद जरूरी है जिसने 9/11 के साजिशकर्ताओं को पनाह दी। उसके बाद के वर्षों में भी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे अलकायदा से जुड़े संगठनों को भी मदद करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे पनाह गाहों की निरंतरता को रोकने के लिए एकजुट होना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे और व्यक्ति किसी भी देश या उसके नागरिकों पर ना थोपे जाएं और कोई भी अपने परिवार और प्रियजनों को
0: जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी पर आधारित संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो रही है। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने कहा है कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग में निहित जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। वे आज NABFID वार्षिक अवसंरचना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated Semicon India 2026 at Yashobhumi in New Delhi. The 3-day conference is focusing on advancing collaboration, investment, innovation and talent development in India. Speaking on the occasion, the Prime Minister said India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and it is opening new opportunities for innovation, investment and growth.
3: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
2: Mr. Modi said on one side India's economy is growing and on the other side global trust in India is also growing. He said despite the challenging global environment, India recorded a growth rate of 7.8%. The Prime Minister said at the same time Japan's credit rating agency also upgraded India's sovereign rating. Mr. Modi said every citizen of the country is working with commitment to build a developed India. On the occasion,

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका। तो आइए हमेशा की तरह आज एक बार फिर से सुनते हैं सुविचार, जिसे हमें भेजा है मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं, पेड़ हमें जीवित रहने के लिए जरूरी कई लाभ प्रदान करते हैं, जिनमें स्वच्छ हवा, साफ पानी, छाया और भोजन शामिल हैं। वे हमें आशा और अंतर्दृष्टि भी देते हैं और दृढ़ रहने का साहस भी। पेड़ हमें ऊंचाइयों पर उड़ते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना सिखाते हैं। बहुत ही अर्थपूर्ण संदेश भेजा है आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों हम पेड़ों पर ही चर्चा कर रहे हैं, ऐसे समय में आपका ये संदेश बहुत प्रासंगिक है। और हमें अगला संदेश मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ भुज से जगदीशोरी पूजा और पायल जी का, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से वारिस अली खान, इस्लामुन निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश लिखते हैं, नदी का सफर हमने सुना, कहानी रोचक, ज्ञानवर्धक और लाभप्रद लगी। शिकायत, मैं काफी दिनों से मेल कर रहा हूँ लेकिन आज तक मेरा कोई भी मेल नहीं पढ़ा गया है, क्या आपको मेरा मेल नहीं मिलता है? जी, इसके लिए हम कहना चाहेंगे, देखिए जैसे ही आपका मेल हमें मिला हमने तुरंत शामिल कर लिया है। कई बार विलम्ब जरूर हो जाता है क्योंकि हमें सभी श्रोताओं के संदेशों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मेल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव खिंदासर तहसील खोलायत जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी, मेन रोड तेलहारा महाराष्ट्र से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, सुनील पोहरकर, साहिल पोहरकर और कुमारी सुजाता पोहरकर, आप सभी श्रोताओं को हार्दिक धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं हम इस सप्ताह पर्यावरण से जुड़ी दुनिया की अनेक लोक कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। इन लोक कथाओं को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण से जुड़े मनोरंजक लेकिन उपयोगी संदेशों को आपके सामने लाना। प्रिय श्रोताओं, आज हम रूस में प्रचलित एक अनोखी मान्यता के बारे में बात करेंगे। रूस के जंगलों में रहने वाले प्राचीन काल के लोगों की एक मान्यता थी, उनके जंगल का कोई रहस्यमय रखवाला है और उस रखवाले का नाम है लेशी। मैं आपके लिए दोहरा दूं, उसका नाम है लेशी। लोग कहते हैं लेशी न देवी है न देवता है, लेकिन वो एक रहस्यमय पात्र है और जंगल का असली मालिक वही है। लेशी लोगों की कल्पना द्वारा गढ़ा हुआ पात्र है। श्रोताओं, लेशी को पात्र मानकर रूस में बच्चों को बहुत सारे पर्यावरण की रक्षा से संबंधित मजेदार संदेश दिए गए हैं, लेकिन कैसे संदेश, आइए जानते हैं। वहां के जंगलों में पुराने लोग और माता पिता अपने बच्चों को लेशी की कहानियां सुनाते हैं और कहते हैं, जंगलों को यदि तुम स्वार्थ के लिए नुकसान पहुंचाओगे तो लेशी तुम्हें सजा देगा, यदि तुम जंगल में कहीं आग जलाकर छोड़ दोगे तो सावधान, कोई देखे या नहीं देखे लेशी तुम्हें देख लेगा, अगर तुम पशु पक्षियों को सताओगे, उन्हें तंग करोगे तो लेशी तुम्हें

मैं भी तंग करेगा। माता पिता बताते हैं लेशी बुरा नहीं है, वो सबको प्यार करता है, लेकिन जंगल प्रकृति और पर्यावरण का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता। और हाँ, जंगल के किनारे रहने वाले गांवों में यदि बच्चे ऊंची आवाज में बात करें तो माता पिता या दादा दादी कहते थे ऊंची आवाज में मत चिल्लाओ, रात को पेड़ सोते हैं उन्हें तकलीफ होती है, और जब उन्हें तकलीफ होती है तो लेशी को भी बुरा लगता है। रात को घरों में बच्चे पूछते हैं लेशी कैसा दिखता है, तो लोग अपनी अपनी कल्पना से पुरानी किंवदंतियों के अनुसार बताते हैं लेशी कभी कभी पेड़ जैसा विशाल दिखता है तो कभी घास जितना छोटा, जब पेड़ से बात करता है तो पेड़ की तरह विशाल हो जाता है, जब किसी घास को मित्र बनाता है तो घास की तरह छोटा हो जाता है, कुल मिलाकर वो बहुरूपिया है, इत्यादि इत्यादि। तो आइए चलते हैं, आज हम आपको लेकर चलेंगे रूस के घने जंगलों में, ऐसे जंगल जहां पेड़ इतने विशाल हैं कि दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। कल्पना करें कि एक जंगल में कुछ लोग गए, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां हैं, पेड़ों को काटने के लिए आरियां हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लाभ कमाना है। तो सवाल है ऐसे में लेशी क्या करेगा, वो तो जंगल का रखवाला है, कैसे जंगल को बचाएगा। आइए सुनते हैं उस मान्यता के अनुसार लेशी क्या करेगा। वो उन लोगों को जंगल में भटका देगा और उस जगह पर पहुंचने ही नहीं देगा जहां जाकर वे पेड़ों को काटना चाहते हैं। वो प्रकार प्रकार का रूप धारण करेगा और उन लोगों को कई ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएगा जिनसे उन पेड़ों तक पहुंचा ही ना जा सके। लेशी उन्हें तब तक चकाता रहेगा जब तक वे परेशान होकर पश्चाताप न कर लें, और जब वे समझ जाएं कि उन्होंने गलत किया है, लेशी उनका प्यारा दोस्त बन जाएगा और जंगल से बाहर निकलने और सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने में मदद करेगा, या उस रास्ते से ले जाएगा जहां काटने के लिए सूखे पेड़ हों। तो श्रोताओं, एक प्रश्न और सुनिए, यदि कोई बस मनोरंजन के लिए शिकार करने जाएगा तो लेशी क्या करेगा। तो यहाँ भी लेशी शिकारी को खूब परेशान करेगा, वो कई पशुओं का रूप धारण करेगा ताकि शिकारी उसका पीछा करें और असली पशु बच जाएं। तो साथियों, ये थी रूस की प्राचीन किंवदंती, है तो काल्पनिक लेकिन कोई संदेह नहीं है कि ये बड़ी मजेदार और पर्यावरण संरक्षण का ठोस संदेश देती है। कितनी सुंदर बात है, आज विज्ञान हमें बताता है कि जंगल पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने, जल चक्र को बनाए रखने और असंख्य जीवों को आश्रय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन सदियों पहले लोग, जब शायद विज्ञान की इन शब्दावलियों को भी नहीं जानते थे, उन्होंने अपनी भाषा में कहा, किंवदंतियों में कहा, लोक कथाओं में कहा, जंगल का भी एक रक्षक है। तो आइए अंत में सुनते हैं कि प्यारा और सबका मित्र लेशी उमंग कार्यक्रम में क्या कहना चाहता है। लेशी कह रहा है हम सबको कि जंगल में प्रवेश करो तो उसके मालिक बनकर नहीं, अच्छे अतिथि बनकर जाओ, जंगल तुम्हारी बड़े प्यार से पूरी आवभगत करेगा। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको लेशी की कहानी, जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का मजेदार प्रश्न, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्यपुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा आज का शैक्षिक कार्यक्रम है विश्व शिक्षक रविन्द्रनाथ ठाकुर।

रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में

0: प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसी भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन कीर्तन कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल भंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार

0: छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कविंद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टोपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना, सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा, अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने।

0: उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यही वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

0: 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है।

0: उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
1: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
2: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर
1: शांति। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
3: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
1: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
3: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
1: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
3: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूं, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
3: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर,

गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून, न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

0: सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।
1: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் வழங்கிய விளம்பரதார நிகழ்ச்சி, ஆகாஷ்வாணி புதுச்சேரி வானொலி நிலையம். நேரம் 6:30. திரையிசை கேட்கலாம்.

0: एक मैदान, एक ट्रैक, एक कोर्ट, एक मैट और करोड़ों दिलों की धड़कन। जब तिरंगा एशिया के सबसे बड़े खेल मंच पर लहराता है तो मुकाबला सिर्फ पदक का नहीं होता, मुकाबला होता है हौसले का, तैयारी का और उस विश्वास का जो एक खिलाड़ी के कदमों से निकलकर पूरे देश तक पहुंचता है। आईटी नागोया बनेगा एशिया के खेल ऊर्जा का केंद्र और भारत एक बार फिर तैयार है पिछले एशियन गेम्स में 107 पदकों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। अब बारी है उस प्रदर्शन को आगे ले जाने की। इस बार ट्रैक पर रफ्तार होगी, क्रिकेट में चौके छक्कों की गूंज होगी, हॉकी में स्टिक और गोल के बीच जंग होगी, कबड्डी के मैट पर सांसें थमेंगी, बैडमिंटन में हर स्मैश उम्मीद जगाएगा, वेटलिफ्टिंग में हर किलो ताकत की कहानी लिखेगा और टेबल टेनिस की छोटी सी गेंद पर भारत की बड़ी उम्मीदें टिकी होंगी। ये है एशियन गेम्स 2026 पर विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत। आकाशवाणी पर एशियन गेम्स स्पेशल सीरीज में आज बात होगी उन खेलों की जहां भारत के पास पिछली कामयाबी का अनुभव और इस बार है नए चैंपियन का जुनून। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज के इस आधे घंटे के विशेष एपिसोड में हम जिन खेलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे उनमें एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग और टेबल टेनिस प्रमुख हैं। हम जानेंगे कि पिछले एशियन गेम्स में इन खेलों में हमारी क्या स्थिति थी, हमने कौन से पदक जीते थे और इस बार किन दिग्गजों और युवा सितारों से देश को उम्मीदें हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो बेहद खास मेहमान, जानी मानी खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मीडिया सलाहकार सायंतन मोइत्रो। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
2: थैंक यू सो मच।
0: शुरुआत करते हैं खेलों की रानी कहे जाने वाले एथलेटिक्स से। पिछले एशियन गेम्स में भारत का एथलेटिक्स में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था जहां हमने 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य मिलाकर कुल 29 पदक अपने नाम किए थे। मुना, आपके साथ शुरुआत करते हैं। नीरज चोपड़ा इस बार नहीं है, पिछले बार स्वर्ण पदक उनके नाम था। पारुल चौधरी की ऐतिहासिक दौड़ थी, तेजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉटपुट में गोल्ड जीता और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम का भी रिकॉर्ड प्रदर्शन था। नीरज के ना होने से आकर्षण थोड़ा फीका जरूर हुआ है, लेकिन किन खिलाड़ियों को आप मानती हैं कि यहाँ से पदक आ सकता है?
1: बिल्कुल, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में एक ऐसा नाम बन चुके हैं कि जब वो मैदान पर उतरते हैं तो लगता है कि एशियाई खेलों में तो स्वर्ण पक्का माना जा रहा था और लगातार उनके प्रदर्शन में जो निरंतरता रही है और एक जो स्टारडम है उनका, तो एक आम आदमी के मन में भी रहता है कि अच्छा नीरज चोपड़ा का मुकाबला कब है। देर रात दोहा डायमंड लीग या बाहर जब भी वो खेलते हैं, देर रात रात तक लोग जागकर उनके मुकाबले देखते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो एथलेटिक्स का जो सबसे बड़ा स्टार है वो नहीं है, लेकिन भारतीय एथलेटिक्स दल काफी बड़ा है, 74 खिलाड़ियों का, और जिसमें अविनाश साबले हो या पारुल चौधरी हो या तेजिंदर पाल सिंह तूर हो, जिनके आपने नाम लिए, वो डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर जा रहे हैं और एक बार फिर उम्मीद उनसे होगी कि वो स्वर्ण पदक जीतकर उस पदक को बरकरार रखकर लौटें। जैसे अविनाश साबले हैं, स्टीपल चेस में हमारे बहुत बड़ी पदक उम्मीद है, पारुल चौधरी है, 5000 मीटर में गोल्ड जीता था, 3000 में रजत पदक जीता था, इस बार भी वो 1500, 3000 और 5000 में उतरेंगी तो उनसे उम्मीद होगी कि वो जहां उन्होंने गोल्ड जीता है उसे बरकरार रखें और दूसरा पदक का रंग बेहतर करें। जेवलिन में नीरज की गैर मौजूदगी में यशवीर होंगे और रोहित यादव होंगे, जिनसे भी उम्मीद होगी क्योंकि जेवलिन भारत में एक फिनोमेना बन चुका है, तो उम्मीद होगी कि वो नीरज से प्रेरणा लेकर कम से कम पोडियम पर खड़े हो सके। पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम हमेशा भारत की मजबूत दावेदार रही है पदक की। ज्योति यारा जी वापसी करेंगे, राष्ट्रमंडल खेलों में भार रही थी 110 मीटर बाधा दौड़ में।

0: उन पर भी नजरें होंगी। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर होंगे जिन्होंने 2023 में रजत पदक जीता था और ग्लासगो में भी वो रजत पदक जीत कर आए हैं। इनके अलावा गुरिंदर वीर है 100 मीटर और रिले टीम में भी वो है। अनिमेश कुजूर 100 मीटर 200 मीटर गुलवीर है जो पिछले कुछ अरसे से काफी अच्छा उनका लगातार प्रदर्शन रहा है। तो 1500 5000 और 10000 मीटर में उन पर नजरें होंगी। प्रवीण चित्रावेल है जो त्रिकूद में भारत के पदक के दावेदार होंगे। डेकाथलन में तेजस्विन शंकर है और एनसी सोजन जो लॉन्ग जंप में है। तो काफी सारा स्टार पावर है भारत के पास और मुझे लगता है कि पिछले प्रदर्शन को अगर बेहतर नहीं कर सके तो दोहरा तो जरूर सकेंगे।
1: सायंथन, जब भी बात एथलेटिक्स की होती है तो चर्चा होती है कि किस तरीके की सुविधाएं खिलाड़ियों को मुहैया कराई जा रही हैं। हमने देखा कि एशियन गेम्स के पहले बहुत सारी सीरीज का आयोजन किया गया। चर्चा ये भी है कि एशियन गेम्स में रहने की व्यवस्था थोड़ी अलग है, तो पटियाला का जो साई सेंटर है वहां पर कुछ उस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए खिलाड़ियों के लिए ताकि उन्हें वहां जाकर कुछ नया अनुभव न हो, वो पहले से कंफर्टेबल हो सकें। थोड़ा जो भारत सरकार का खेल मंत्रालय है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, किस तरह की सुविधाएं प्रदान की पिछले कुछ समय में इस एशियन गेम्स को ध्यान में रखकर, उसके बारे में बताएं।
2: पहली बात तो देखिए, आपने पटियाला के जिक्र की, पटियाला के साथ बैंगलोर भी हम लोग शिपिंग कंटेनर्स जो है जो जापान के आइची नगोया में होने वाले जहाँ पे एथलीट्स के एकोमोडेशन होंगे, तो उसका व्यवस्था उसका एक्लमेटाइज करने के लिए खेल मंत्रालय ने पहले से सोच के रखा था। और जब शिपिंग कंटेनर्स की बात किया जाएगा, छोटे से सबको लगता है कि क्लॉस्ट्रोफ्रोबिक है, सफोकेट होंगे, ये होंगे, छोटे से रूम है। तो लेकिन बात यह है कि हमारे सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एथलीट जो है हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, वो है तजिंदर पाल तूर जी। लेकिन 40x8 जो हमने बेड्स बनाए, उन्होंने बताया कि मेरे को ये हॉस्टल के दिन याद आ जाते हैं। ये जो एडजस्टमेंट का एक्लमेटाइज करने का व्यवस्था लिया गया खेल मंत्रालय से, ये उनको वहाँ जाके कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर, कोई फिजिकल प्रेशर ना अपनाना पड़े, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। एंड एथलीट्स आर वेरी हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। तो बेसिकली ये हमें और भी वो आगे जाने वाले जो प्रेशर होने वाले उससे काफी बचा रहा है।
1: मुना, आपने कई खिलाड़ियों की चर्चा की एथलेटिक्स में, ट्रैक एंड फील्ड की, जिनसे काफी उम्मीद है। सर्वेश कुशारे भी एक एथलीट है जो हाई जंप में है, कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीत कर आए हैं। हैमर थ्रो में अगर बात करें तो तानिया चौधरी है जिन्होंने एशियन गेम्स से ठीक पहले 68.35 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। कुछ बड़े नामों के अलावा कुछ उन नामों के बारे में भी बताइए जिनसे उम्मीदें हैं और जो छुपा रुस्तम भी साबित हो सकते हैं।
0: देखिए, सबसे जैसे सायंतन ने अभी बताया कि जिस तरीके से खिलाड़ियों का पूल निकल कर आ रहा है, हर एक टूर्नामेंट में एक नया पूल हमारे सामने आता है और उसके लिए खेलो इंडिया से जो हमारे एथलीट्स निकल कर आते हैं, तो मुझे लगता है कि इन एशियाई खेलों में भी जो जाने माने नाम है उनके अलावा कई नए खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे, कई नए पदक विजेता हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि दो दिन पहले ही जो टॉप्स के सीईओ हैं एनएस जोहल, वो बता रहे थे कि जो हमारा कंटिंजेंट है उसमें मैक्सिमम जो है वो डेब्यूटेंट्स हैं इन खेलों में। 500 का जो दल है उसमें 300 खिलाड़ी डेब्यूटेंट्स हैं वर्ल्ड कप पे। तो आप इससे खुद अंदाज लगा सकते हैं कि एशियाई खेलों में इस बार हमें नए पदक विजेता मिलने जा रहे हैं।
1: जी हाँ, जिसमें शैली सिंह से भी लॉन्ग जंप में उम्मीद होगी। मोहम्मद अफजल 800 मीटर में भारत की चुनौती पेश करेंगे। पैदल चाल में प्रियंका गोस्वामी एक बार फिर सबके उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगी। साथ ही साथ एनसी सोजन की भी आपने चर्चा की। जब साई इस तरीके के इवेंट में खिलाड़ियों पर नजर रखता है और आप काफी करीब से हैं, देख रहे हैं इन चीजों को, आपको क्या लगता है कि ट्रैक और फील्ड में वो टॉप 5 एथलीट्स कौन हैं जो जरूर पोडियम फिनिश कर सकते हैं अगर उनका दिन बेहतर रहा तो?
2: देखिए, नीरज चोपड़ा सबसे बड़े सुपरस्टार है इंडियन एथलेटिक्स के, बट उनके ना होने के बावजूद भी रोहित यादव और यशवीर सिंह जो हमारे एक वाइल्ड कार्ड रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में, और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नीरज चोपड़ा के साथ भी कोई एक भारतीय पोडियम पे चढ़ेंगे, बट वो जो अनएक्सपेक्टेड था वो हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अभी अगर जैवलिन की बात किया जाए, अगर मैं जैवलिन पे फोकस करता हूँ, रोहित और यशवीर में से हम उम्मीद करेंगे कोई दो अगर आ जाए पोडियम पे तो भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। उसके साथ भी एनसी सोजन की बात आपने की थी, एनसी सोजन ने अभी हाल ही में अंजू बॉबी जॉर्ज की जो रिकॉर्ड है 6.83 मीटर की, उन्होंने 6.88 मीटर उन्होंने जंप किया। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अभी जो एनसी सोजन का कंसिस्टेंसी है, तो मेरे ख्याल से एशियन गेम्स में एट द टाइम, क्योंकि वो सिल्वर मेडलिस्ट ऑलरेडी है हंजाओ से, उसके बाद में मैं बोलना चाहूंगा पूजा सिंह के बारे में। पूजा सिंह का 1.93 जो पर्सनल बेस्ट है
1: हाई जंप में,
2: 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स में थोड़ा सा चूक

0: गए थे जहाँ पे वो 8 था, ये 1.77 मीटर, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे क्या वो कंपटीशन का प्रेशर है। तो मेरे ख्याल से वो कंपटीशन का प्रेशर ना भी हो, क्योंकि अगर वो 6 था ये 1.80 के ऊपर, तो 1.93 अगर वो बेंचमार्क को क्वालिफाई करती है, प्रिटी श्योर शी विल बी अ मेडल प्रोबेबल इन आईची नगोया एशियन गेम्स।
1: तो उम्मीद करते हैं कि ट्रैक एंड फील्ड में भारतीय तिरंगा शान से लहराएगा। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब चर्चा देश की शान हॉकी की। 2023 में हमारी पुरुषों की हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को 5-1 से रौंद कर गोल्ड मेडल जीता था और ओलंपिक का टिकट भी कटाया था। वहीं हमारी

0: कहा जा रहा है कि एशियन गेम्स में अगर टक्कर मिलेगी तो जापान से मिलेगी, कुछ हद तक मलेशिया को भी हम काउंट कर लेते हैं, किस तरह देखते हैं?
1: जी बिल्कुल, इस बार जब विश्व कप के लिए टीम गई थी तो लग रहा था कि 75 के बाद हम पहली बार पोडियम पे शायद खड़े होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर निराशाजनक प्रदर्शन रहा, खासकर गोलकीपिंग की अगर हम बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में लगा कि पीआर श्रीजेश की कमी कहीं ना कहीं टीम को खल रही है। तो एक ये ऐसा डिपार्टमेंट है, और डिफेंस जो आखिरी मिनटों में गोल गंवाना और फंबल करना, ये सब जो कमियां हैं वो भारतीय टीम ने काफी इस पर आत्ममंथन किया होगा। और यहाँ पर दारोमदार एक बार फिर रहेगा कि आप जो कोर ग्रुप है वो वही है, उसी को लेकर जा रहे हैं। तो जो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्शन और जो गोलकीपिंग में चूक हुई है उनसे यहाँ पार पाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ चुनौतियां उतनी कठिन है नहीं। विश्व कप में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के सामने आप खेल रहे थे, यहाँ पर आपसे हायर रैंकिंग वाली टीम कोई है नहीं। तो एशिया में चुनौती देने वाली जो टीमें हैं, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान हॉकी का क्या हाल है वो हम सब देख ही रहे हैं। मलेशिया कभी एक अच्छी टीम हुआ करती थी, लेकिन आज की मलेशिया टीम उस स्तर की नहीं है कि वो भारतीय टीम को चुनौती दे सके। जापान जरूर एक डार्क हॉर्स है, क्योंकि ये एशियाई खेल जापान में ही हो रहे हैं, और 2018 में हमें याद है किस तरीके से अप्रत्याशित रूप से जापान ने स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक क्वालिफाई भी किया था। तो हरमनप्रीत सिंह और मनप्रीत का भी मैं नाम लूंगी, सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा मैच भारत के लिए खेल चुके हैं, लेकिन जो वर्ल्ड कप में कमी नजर आई थी कि मिडफील्ड हमारा कहीं नजर ही नहीं आ रहा था, तो एक जो गैप्स मिडफील्ड में हो रहे हैं उनसे भारत को पार पाना होगा। और यहाँ जब हम लोअर रैंक टीम से खेलते हैं तो यहाँ पर कॉम्प्लिसेंसी से, आत्ममुग्धता से बचना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो यहाँ पर भारत को वर्ल्ड कप बीत गया, पीछे की बात है, उसको भुलाकर अब टारगेट जो है वो लॉस एंजलिस ओलंपिक है, उसको ध्यान में रखकर, क्योंकि हर टीम को चाहिए कि ओलंपिक की तैयारी के लिए एक लंबा समय मिले, और यहाँ से अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हमें क्वालिफायर से नहीं गुजरना पड़ेगा, तो उससे बचना चाहेगी टीम। क्वालिफायर का रास्ता हमेशा कठिन होता है, एशियन गेम्स के जरिए लॉस एंजलिस का टिकट कटाना ये सबसे बड़ी अभी लक्ष्य जो है वो भारतीय टीम का यही होना चाहिए, पुरुष हॉकी टीम।
0: सायंतन, पुरुष हॉकी की थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, विदेशी कोच हैं, मेंटल ट्रेनर भी हैं, फिजियो भी हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में थोड़ा फिटनेस का इशू नजर आया, क्या एशियन गेम्स से पहले उस पर तैयारी की गई है, उसको दुरुस्त किया गया है?
2: देखिए, अब हमें लॉस एंजलिस ओलंपिक्स का जो टारगेट है उसको मद्देनजर पे रखते हुए हमें आगे बढ़ते जाना एशियन गेम्स पे। विमेंस टीम अगर इतना अच्छा कर सकते हैं वहाँ पे, फिफ्थ आ सकती है, तो मेंस टीम भी कहाँ पीछे, क्योंकि एशियन गेम्स में एक ट्रेंड चला है जहाँ पे मेंस हॉकी टीम से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है और गोल्ड के नीचे एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं है। तो उसी को साई इस बार मद्देनजर पे रखते हुए काफ़ी सारे जापान में, जैसे माउंट फूजी में, जीफू में, तोयामा, ये सब जगहों में उन्होंने एक्सपोजर कैंप्स भी रखे ACTC के थ्रू, टॉप्स के थ्रू, काफ़ी एक्सपोजर कैंप्स बोथ मेंस टीम और वुमेंस टीम को मिले हैं। जैसे क्रेग फुल्टन की जो साइड है उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगा, और शॉर्ट मरीन की जो वुमेंस टीम है उनको भी काफ़ी हेल्प मिले। शॉर्ट मरीन का पता है आपको, वुमेंस टीम को आके एकदम पूरा चार चांद लगा दिया, क्योंकि उन्होंने 2022 जब हॉकी में हम लोग
1: फोर्थ प्लेस फिनिश
2: जब हम लोग हॉकी वुमेंस में लाए थे, तो शॉर्ट मरीन भी थे, वो वापस आ गए, और वुमेंस का कितना डेवलपमेंट हुआ आपको पता भी है वर्ल्ड कप में जो आया है। मेंस का हम यही उम्मीद करेंगे कि वो लोग बरकरार रखे यही परफॉर्मेंस जो हमने एक्सपोजर दिया है, जो हमने कैंप्स दिया है जापान में, एक्लेमेटाइज और भी करने में वो मदद करे, एंड डेफिनेटली लॉस एंजलिस का जो टारगेट है वो हम फुलफिल कर सकते हैं।
0: महिला हॉकी की चर्चा करें, पिछली बार हम सेमीफाइनल में 0-4 से हार गए थे चीन से, इस बार जिस तरीके का विश्व कप में प्रदर्शन रहा, जैसा कि सायंतन बता रहे थे और हमारे खेल प्रेमी जानते भी है कि हम 5वें स्थान पर रहे, कितनी उम्मीदें हैं और टक्कर किस देश से आप देख रही हैं?
1: देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वर्ल्ड कप जाने से पहले जो बैकग्राउंड रहा है उसको देखते हुए हर कोई बात कर रहा था कि पुरुष हॉकी टीम क्या करेगी, क्या मेडल मिलेगा, क्या 50 साल का सूखा खत्म होगा, लेकिन जिस तरह से लड़कियों ने प्रदर्शन किया है, और आपको ये बात यहाँ ध्यान में रखनी होगी कि इस टीम में 11 खिलाड़ी ऐसी थी जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही थी, और 20-21-22 साल की 11 लड़कियां, तो महिला हॉकी टीम के पास ऊर्जा है, फिटनेस है, और शोर्ड मारिन जैसा एक कोच है। जब वो पिछली बार आए थे तब भी डोलड्रम में थी विमेन हॉकी, और उस हॉकी टीम को वो टोक्यो में 4th स्थान तक लेकर गए। अभी भी आप देखिए, नेशंस कप जीता, क्वालिफायर जीता वर्ल्ड कप के लिए और उसके बाद अब प्रबल दावेदार मानी जा रही है। और एशियाई स्तर पर चाइना एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि उसके पास अन्नान एलिसन जैसी एक बेहतरीन

0: कोच है, लेकिन हम विश्व कप के प्रदर्शन को अगर देखें तो उसी चाइना से हमारा सबसे पहला मुकाबला था और हमने उसको ड्रॉ पर रोका। तो एक बहुत बड़ा एक मेंटल एडवांटेज है भारतीय टीम के पास कि जो एक हवा होता था चाइनीज टीम का वो अब नहीं है, और ये टीम अपना दिन होने पर चाइना को हरा सकती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और गोलकीपरों का प्रदर्शन हमने देखा, सविता लेजेंडरी प्लेयर है और 320 मैच हो जाएंगे जैसे ही वो पहले मैच के लिए उतरेंगी, तो सविता का अनुभव है। उसके अलावा बिच्छू देवी ने जो प्रदर्शन किया है विश्व कप में, खासतौर पर इंग्लैंड के खिलाफ जो लास्ट 30 सेकंड में उनका सेव था, तो बिच्छू देवी पर भी यहाँ नजरें होंगी। चुनौती बहुत कड़ी नहीं है और भारतीय टीम के पास एक पूरा कोचिंग स्टाफ है हर फील्ड के लिए, हर चीज के लिए। आप चाहे शोर्ट मारिन के साथ आप देखिए, वेन लोम्बार्ड है, जब वो यहाँ आए थे जनवरी में उनके पास 25 खिलाड़ियों की इंजरी लिस्ट थी, लेकिन आज आप टीम का फिटनेस लेवल देखिए। ताइके तकामा दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रैग फ्लिकर में से एक थे, वो भारतीय ड्रैग फ्लिकर दीपिका खासतौर पर उनको ट्रेन कर रहे हैं। उसके अलावा पिरमिन ब्लाक एक लेजेंडरी गोलकीपर रह चुके हैं डच, उन्होंने बिच्छू और सविता के साथ सेशन किए हैं। और मथियास विला अर्जेंटीना के जो एडवाइजर है, असिस्टेंट कोच भी है। उसके अलावा रोडेट और कियारा जो साइंटिफिक ट्रेनर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस टीम के लिए। तो मुझे लगता है कि इस बार 1982 में हमने गोल्ड जीता था महिला हॉकी में, और मुझे लगता है इस बार पूरी प्रबल संभावना है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से माहौल है, अपबीट है टीम, ये टीम जरूर इस बार गोल्ड मेडल लेके आएगी।
1: चलिए हॉकी के बाद चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट पर। बैडमिंटन कोर्ट पर भारत का पिछला प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा था। 2023 में यानी पिछले एशियन गेम्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुषों के डबल्स में भारत को एशियन गेम्स के इतिहास का पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। इसके अलावा पुरुष टीम ने रजत पदक और एचएस प्रणॉय ने पुरुष सिंगल्स में कांस्य पदक जीता था। और इस बार अगर हम आपको बताएं कि कौन से खिलाड़ी जा रहे हैं, तो मेन सिंगल्स में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी होंगे पुरुष वर्ग में, साथ ही साथ महिला सिंगल्स में अनुभवी पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा अपनी चुनौती पेश करेंगी। मेंस डबल्स में एक बार फिर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पर नजर होगी। हरी हरन और एमआर अर्जुन की जोड़ी भी चुनौती पेश करती नजर आएगी। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद के साथ साथ कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी भी होंगी। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा कास्त्रो की जोड़ी अपनी चुनौती पेश करती नजर आएंगी। मोना, एक तरफ तो अनुभव है पीवी सिंधु का, लक्ष्य सेन भी हैं, अगर पहले हम सिंगल्स की बात करें, लेकिन जो बड़ा इन्वर्टेड कॉमा है, दोनों फॉर्म में नहीं है।
0: जी बिल्कुल, लेकिन ओलंपिक पदक विजेता है 2 बार की पीवी सिंधु, और लक्ष्य सेन हम सभी जानते हैं कि वो मामूली अंतर से ओलंपिक पदक से चुके हैं, तो काबिलियत पे कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि फॉर्म जो होता है वो टेम्परेरी होता है, लेकिन क्लास जो होता है वो परमानेंट होता है, और पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के पास वो क्लास है कि अगर वो अपनी क्षमता पर खेले तो बिल्कुल स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदारों में होंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी दावेदार है वो निश्चित तौर पे, जैसा आपने कहा, चिराग और सात्विक, पिछली बार भी गोल्ड जीता है और निरंतरता है उनके प्रदर्शन में कि कम से कम वर्ल्ड लेवल पे भी वो सेमीफाइनल तक जरूर जाते आए हैं, तो उनसे एक बार फिर यहाँ उन पर काफी दारोमदार होगा। और लड़कियों में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद, जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने इतिहास रचा है, और एक कोर ग्रुप आप देखिए लगभग वही है जो हर बड़े टूर्नामेंट में आप देखते हैं भारतीय बैडमिंटन का, तो यहाँ पर त्रिशा और जौली से भी ये उम्मीद होगी कि वो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप, अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है उसको, तो वो जो लय है उसको बरकरार रखें, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज है उसको थोड़ा बेहतर करते हुए एक अच्छा भारत के लिए मेडल हॉल लेकर आए।
1: साइंथन, बैडमिंटन एक ऐसा खेल जिस पर खेल मंत्रालय और साई की पैनी नजर रहती है, और बहुत सारे उसमें इनोवेशन भी करते रहते हैं। जूनियर लेवल पर आप विदेशों में खिलाड़ियों को भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, विदेशी कोचेस को बुलाते हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट है जरूर, लेकिन बहुत सारी चीजें चल रही हैं इसमें। किन खिलाड़ियों से आपको उम्मीद है?
2: Well, जैसे अभी बताया गया कि त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप दिल्ली में उन्होंने ऐसा करके दिखाया जो कुछ लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, काफी स्पोर्ट्स फैंस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं बोलना चाहूंगा हांजाओ में वो लोग राउंड ऑफ 16 में आए थे, लेकिन अगर ये BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो फॉर्म दिखाए वो लोग, जो डबल्स वुमेन्स पेयर, तो यू नेवर नो कि वो लोग कौन से स्टेज तक जा सकते हैं। और ये एशियन लेवल है तो और एशियन लेवल में कंपटीशन आएगा, चाइना से आएगा, कोरिया से आएगा, जापान, थाईलैंड ऑफ कोर्स, लेकिन अगर वो लोग उस कॉन्फिडेंस, उस मोराल को लेके आगे जाते हैं तो डेफिनेटली दे कैन डू समथिंग। उसके बाद मैं आऊँगा आयुष शेट्टी में। आयुष शेट्टी ने एशियन चैंपियनशिप्स में हिस्ट्री

0: 2026 में, इसी साल में किया था, कि 1965 के बाद पहला खिलाड़ी जो एशियन चैंपियनशिप्स के फाइनल में और सिल्वर मेडल भी लाए। तो आयुष शेट्टी से भी यही उम्मीद है एंड डेफिनेटली होपिंग कि अच्छा कुछ बैडमिंटन में हो सकता है। एंड डेफिनेटली सात्विक चिराग एक डार्क हॉर्स है जो कंपटीशन में बाहर आते हैं, तो वो वाला चीज़ भी हमें देखने को मिल सकता है। तो देर इज़ ऑप्टिमिज्म इन बैडमिंटन, जो ऑफ कोर्स हम लोग सब विश करेंगे कि होपफुली आईजीनक हो में वो बाहर आए।
1: जी हाँ, बैडमिंटन कोर्ट पर भारतीय एथलीट अपनी चमक बिखेरे हम सबकी उम्मीद है, लेकिन अब रुख करते हैं माटी के खेल कबड्डी की ओर। कबड्डी में भारत का दबदबा हमेशा से रहा है। पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष टीम ने ईरान को एक रोमांचक फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक वापस हासिल किया था। वहीं भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ताइपे को हराकर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। मोना, हम सब जानते हैं कि कबड्डी में टीम अच्छी है और जब से कबड्डी लीग की शुरुआत हुई है फिटनेस लेवल भी आला दर्जे का हो गया है, लेकिन ईरान, दक्षिण कोरिया, चीनी ताइपे जैसी टीमें हमसे टकराएंगी, कितनी संभावना है इस बार?
2: देखिए, ईरान की ही चुनौती सबसे कठिन लग रही है भारत के लिए, लेकिन आप ये भी देखिए कि जो पास्ट रिकॉर्ड है 1990 के बाद लगातार 9 स्वर्ण। तो पहले ये होता था कि एशियन गेम्स में जब टीम कंटिंजेंट रवाना होता था तो ये मान लिया जाता था कि एक गोल्ड तो झोली में है ही कबड्डी का, लेकिन ईरान ऑफ लेट भारत के लिए एक कड़ी चुनौती साबित हुआ है। लेकिन जैसे आपने कहा, प्रो कबड्डी लीग आने के बाद से जो स्टैंडर्ड है खिलाड़ियों का हमारे, वो बहुत बहुत आगे जा चुका है। पवन सहरावत आज जाना माना नाम हो चुके हैं और काफी अच्छे खिलाड़ी भारतीय टीम के पास हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ये स्मूथ ही रहने वाला है जर्नी। और महिला टीम की भी अगर हम बात करें तो ईरान ने हराया था भारत को हाल ही में, तो एक ईरान ही है वहां पर भी जो बहुत संभल कर उससे खेलना होगा, और अगर अपनी क्षमता के अनुरूप खेल पाए तो मुझे लगता है एक बार फिर हम दोहरा स्वर्ण यहाँ लेकर आ सकते हैं कबड्डी से।
1: जी हाँ, सायंतन पवन सहरावत की चर्चा हो रही है, अर्जुन देशवाल हैं, असलम इनामदार हैं, आशु मलिक, देवांग दलाल, आयान लोचब, सुनील कुमार, कुछ चहेते नाम भारतीय कबड्डी फैंस के लिए, लेकिन टक्कर काफी मुश्किल होने वाली, महिला टीम से कितनी उम्मीदें हैं आपको?
0: देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब एशियन गेम्स में हमारे टीम स्पोर्ट्स की बात किया जाता है तो हमेशा 6 मेडल्स तो हमारे लिए पक्का होता है, 2 मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी टीम का, 2 मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट टीम का और 2 हॉकी टीम्स के। पवन शेरावत के बाद जो आपने किया, पवन शेरावत, मैं पहले पीकेएल की बात करूंगा आपसे। 12 खिलाड़ी जो है पीकेएल से, वो कैप्टन भी है, वाइस कैप्टन भी है विभिन्न टीम्स का पीकेएल में, वो लोग एशियन गेम्स में भी अपना प्रदर्शन करने वाले। जैसे पवन शेरावत का नाम लिया आपने, तमिल थलाईवास के कैप्टन रह चुके हैं, पिछले बार के हंजू का गोल्ड मेडलिस्ट भी है। सुनील कुमार जो नेतृत्व करने जा रहे हैं, वो यू मुंबा के कैप्टन भी है। तो काफ़ी ऐसा प्रो कबड्डी लीग का एक्सपीरियंस भी हमको दिखने को मिलेगा। साई गांधीनगर में भी उनका ट्रेनिंग का एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर साई गांधीनगर में तैयार किया था। उसके पहले IIS बिलारी जो कर्नाटका में है, वहाँ पे भी एक टीम का बढ़िया सी ट्रेनिंग कैंप किया गया था कबड्डी के लिए स्पेशली। तो मेरे ख्याल से अभी जो हाल ही में बात हुआ था मेरा कबड्डी टीम से, पुष्पा राणा जो है कैप्टन जो है विमेंस टीम का, वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है, और साथ ही साथ सुनील कुमार भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है जो मेंस टीम का कप्तान है। एंड ये भी बताना चाहूँगा कि अभी जो एज ग्रुप है मेंस टीम का स्पेशली, 20 से 29 का एज रेंज में है, जिस एज में हम लोग कबड्डी में अपना पीक परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। कंपटीशन है तो ईरान से है हमारा, अगर कोरिया से भी आ सकता है, चाइना से भी आ सकता है, लेकिन एडवांटेज है हमारे पास, वी आर देयर टू विन द गोल्ड मेडल। बट थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाता है तो वो गेम टू गेम हो सकता है, बट आई थिंक मेडल हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कंफर्म्ड है, जो स्वर्ण होने जा रहा है।
1: आइए बात करते हैं वेटलिफ्टिंग की, जहां ताकत, तकनीक और एकाग्रता की परीक्षा होती है। पिछले एशियन गेम्स में चोट और कड़े मुकाबले के कारण भारत का वेटलिफ्टिंग अभियान थोड़ा निराशाजनक जरूर रहा था। मीराबाई चानू भी चोट के कारण पदक से चूक गई थी। मुना, यहाँ पर कोई पुरुष वेटलिफ्टर प्रतियोगिता में जा नहीं रहा है, और एक बार फिर जो महिला टीम है उसमें मीराबाई चानू से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीत कर आई हैं, 49 किलोग्राम वजन वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगी, क्या लगता है?
2: जी बिल्कुल, ऋषि कांता सिंह को जाना था लेकिन घुटने की चोट की वजह से वो टीम से बाहर हो गए। तो 4 महिलाएं, वुमेन पावर जो है वो वेटलिफ्टिंग में देखने को मिलेगा। और मीराबाई चानू अभी ग्लासगो में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक उन्होंने जीता, और एक उनकी जो कैबिनेट है उसमें एक यही मेडल है जो नहीं है। पिछली बार बहुत कोशिश की लेकिन चोटिल थी और चौथे स्थान पर रही, तो इस बार पूरी उम्मीद है कि मीराबाई चानू जो है वो इस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगी। उनके अलावा ज्ञानेश्वरी यादव है 53 किलो में, निरुपमा देवी है 61 किलो में, और हरजिंदर कौर है 69 किलो में। तो इन

0: चारों महिलाओं से उम्मीद होगी कि भारत ने वेटलिफ्टिंग में काफी सारे 14 पदक जीते हैं, लेकिन स्वर्ण पदक एक भी नहीं है एशियन गेम्स का, तो वो कमी को पूरा करने के लिए मीराबाई चानू पर काफी दारोमदार होगा।
1: और अब बात टेबल टेनिस की, जहां भारत ने हाल के वर्षों में अद्भुत प्रगति की है। पिछले एशियन गेम्स में सुतीर्थ मुखर्जी और अहिका मुखर्जी की जोड़ी ने दुनिया की नंबर एक चीनी जोड़ी को हराकर विमेंस डबल्स में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था। इस बार फिर जी साथियन पर नजर होगी, मानव ठक्कर होंगे, श्रीजा अकुला और सुतीर्था मुखर्जी पर भी नजरें होंगी। क्या लगता है कि किन खिलाड़ियों से ज्यादा उम्मीदें हैं? सुतीर्था पिछले कुछ समय से लगातार भारत के लिए बेहतर प्रदर्शन करती नजर आई हैं, दिया चिताले ने भी प्रॉमिस दिखाया है।
2: देखिए, अगर एशियन गेम्स की बात किया जाए तो हमारा जो डबल्स पेयर है, काफ़ी हम लोग ने साइज से इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग दिया है उनको, गुजरात में भी है, बेंगलोर में भी है, हैदराबाद में भी, कोलकाता में काफ़ी इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग हुआ था, कैंप नहीं हुआ था एक कंबाइंड, लेकिन इंडिविजुअल ट्रेनिंग से यही बाहर आया कि मानव ठक्कर और मनु शाह जो है, जो मेन्स डबल्स पेयर में खेलने जा रहे हैं, वर्ल्ड रैंकिंग 2 पे आए थे ITTF डबल्स स्टैंडिंग्स में, तो ये काफ़ी एक हिस्टोरिक है। और इसके साथ भी मनु शाह दिया चताले, जैसे आपने बात किया, उनके साथ भी मिक्स डबल्स खेलने जा रहे हैं, तो शरत कमल जो हमारे असिस्टेंट शेफ डे मिशन भी है एशियन गेम्स के, वो भी इनको डायरेक्टली ट्रेन किया है, सबसे फेमस टेबल टेनिस प्लेयर इन इंडिया। तो मेरे ख्याल से मनु शाह, मानव ठक्कर, दिया चताले, इन तीनों में से काफ़ी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। और साथ ही साथ श्रीजा अकुला भी है हाईएस्ट रैंक्ड वुमेन्स प्लेयर राइट नाउ आफ्टर मनिका बत्रा एंड सुतीर्था, जैसे आपने जिक्र किया, तो इनसे आई थिंक मेन्स टीम, वुमेन्स टीम, काफी सारे कॉम्पिटिशन्स में, काफी सारे कैटेगरीज में हम लोग अच्छा उम्मीद कर सकते हैं टेबल टेनिस के।
1: और अब बात उस खेल की जो भारत में ही नहीं दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय है, जी हाँ, क्रिकेट। 2023 एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता था और इस बार भी उम्मीद यही है। टक्कर कहीं देखती है मोना?
0: बिल्कुल, जैसे सैंतन कह चुके हैं कि वो कुछ पदक है जो हमें लग रहा है कि हमारी झोली में है पहले से, तो क्रिकेट सबसे ऊपर उसमें नाम आता है। महिला टीम की बात करें तो अभी अभी एशिया कप जीती है, जबरदस्त आत्मविश्वास है, और हमने देखा कि एशियाई स्तर पर कोई टक्कर नहीं है भारतीय महिला टीम के लिए। और पुरुष टीम में तो वैसे ही सितारे भरे हुए हैं, श्रेयस अय्यर हो, वैभव सूर्यवंशी हो, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई चुनौती दूर दूर तक भारत के लिए नजर आती है।
1: सायंतन, कार्यक्रम के समापन में क्या उम्मीदें हैं साई को, क्या उम्मीदें हैं खेल मंत्रालय को, और क्या उम्मीदें हैं बतौर मीडिया सलाहकार साई से जुड़े आपको?
2: लास्ट टाइम जितना कंटिंजेंट थे उससे काफी कम कंटिंजेंट इस बार जा रहा है, 501 पार्टिसिपेंट जा रहा है, लेकिन 107 मेडल जो लास्ट टाइम आए थे उससे भी हम एटलीस्ट 25% इंक्रीज की उम्मीद कर सकते हैं। तो हमारा ग्राफ यही रहेगा कि हम लोग तो थोड़ा सा कम कंटिंजेंट भेज रहे, लेकिन वो कंटिंजेंट और भी मेडल्स ला सकते हैं। ऐसे कुछ लोग, मंत्रालय से डिसीजन लिया गया कि कुछ लोग को जस्ट पार्टिसिपेशन एक्सपोजर के लिए हम लोग नहीं भेजेंगे, बट जो मेडल के दावेदार है उनको ही भेजेंगे, क्योंकि ये रूल पहले से किया गया कि एथलीट्स का ट्रेनिंग देखते ही हमने ये फैसला लिया कि एथलीट्स अभी वो लोग मेडल जीतने के लिए जाते, ये एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ है। और साई ने, खेल मंत्रालय ने भी इसी चीज को मद्देनजर पर रखते हुए इस बार जो 501 एथलीट्स को भेज रहे हैं, और भी 25% इंक्रीज एटलीस्ट हम उम्मीद कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली वो होके ही रहेंगे एशियन गेम्स 2026 में।
1: मैदान तैयार है, रोशनी जगमगा रही है, और तिरंगा जीत की उम्मीद लेकर आसमान में लहरा रहा है। तो जब भी कोई भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतरे, तालियां जरूर बजाइए, हौसला बढ़ाइए और दिल से कहिए चीयर फॉर भारत। चीयर फॉर भारत के इस अंक से जुड़ने के लिए मोना पार्थसारथी, आपका, सायंतन मोइत्रो, आपका बहुत बहुत आभार।
0: शुक्रिया आनंद।
2: थैंक यू सो मच।
1: इस कार्यक्रम में प्रोडक्शन सहयोग दिया स्वाति कपूर ने, इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया शाहनवाज खान ने। आकाशवाणी पर कल इसी समय एशियन गेम्स पर एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी आनंद श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: गांव पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, देश की युवा पीढ़ी पर पूरा भरोसा है।
1: टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज, अ रेजिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ रोहन राज टर्म द माई गॉव प्लेटफॉर्म एज अ वेरी इफेक्टिव मीडियम फॉर शेयरिंग फीडबैक एंड सजेशन इन फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट्स स्कीम्स एंड पॉलिसीज।
2: थ्रू माई जीओवी पीपल कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। दे कैन ऑल्सो शेयर देयर आइडियाज, ओपिनियंस एंड सजेशंस विद द गवर्नमेंट। इट ऑल्सो प्रोवाइड क्विज, कॉम्पिटिशन एंड ऑनलाइन एक्टिविटी वेयर स्पेशली यंग पीपल कैन पार्टिसिपेट। So my government gives people a simple way to connect, to inform, share their ideas and take part in the development of the country.
1: By July 2026, nearly 6.5 crore citizens had registered on the MyGov platform. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
3: Prime Minister Modi today said the BJP government in West Bengal aims to ensure that not a single eligible woman is deprived of the benefits of the Annapurna Yojana and is working relentlessly towards that goal. Mr. Modi stated this while virtually addressing a gathering in West Bengal during the release of the installment under the Annapurna Yojana, providing 3,000 rupees per month to around 1.5 crore women.
4: अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत इसी सोच के साथ हुई है। सरकार बनाने के कुछ ही दिनों के भीतर इस योजना पर काम शुरू हुआ और आज इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं तक सीधे बैंक में पैसा पहुंचना शुरू हो गया है। कोई कटमनी नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। हमारी सरकार का ये भी लक्ष्य है कि एक भी पात्र महिला अन्नपूर्णा योजना के लाभ से वंचित न रहे, इसके लिए भी यहां तेजी से काम हो रहा है।
3: दिस इज आकाशवाणी, यू आर लिसनिंग टू द न्यूज एट 9।
5: स्टे कनेक्टेड विद AIR न्यूज, फॉलो अस ऑन एक्स एट AIR न्यूज अलर्ट्स एंड विजिट newsonair.gov.in फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स।
3: The coal ministry launched the 16th round of commercial coal mine auctions in New Delhi today. This round offers 25 coal blocks comprising 21 fully explored and 4 partially explored mines across 9 coal-bearing states: Arunachal Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra. Sankalp Abhiyan begins across the country, marking Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday and 25 years in public service. And in men's cricket, India and Afghanistan face off in the third and final match of the T20 series in Delhi. And that's all in the news at 9. Good night.

0: நேரம் 10 மணி.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा। इसके अंतर्गत आज सुनिए 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारी नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए के अस्थाना। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: नेतृत्व जब विचारों से आगे बढ़कर संकल्प बनता है तो नीतियाँ केवल कागज पर नहीं बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बना देती हैं। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने जब कमान संभाली तो एक नए प्रशासनिक मॉडल की नींव रखी गई। शिकायतों का सीधा समाधान देने वाला स्वागत पोर्टल हो, गांव-गांव तक 24 घंटे बिजली पहुंचाती ज्योति ग्राम योजना या फिर प्यासी जमीन तक जल लाती सोनी परियोजना, कन्या केलावणी से बेटियों का सशक्तिकरण, कृषि महोत्सव से किसानों की प्रगति और गरीब कल्याण मेले से अंतिम व्यक्ति का अधिकार, विकास की इसी सोच ने वाइब्रेंट गुजरात और गिफ्ट सिटी के रूप में वैश्विक पहचान बनाई। गुजरात के इन्हीं जमीनी प्रयोगों और अनुभवों को आधार बनाकर आज बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सशक्त और आत्मनिर्भर नए भारत के निर्माण के लिए प्रयासरत हैं। जनसेवा से देश सेवा के इस 25 वर्षों के निरंतर सफर को जानने के लिए पेश है आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला का पहला एपिसोड 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हमारे साथ दो जाने माने

0: ने विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारिता एवं नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए के अस्थाना जी, आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद जी।
0: केतन जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। 2001 जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली, उस समय राज्य भूकंप, सूखे और प्रशासनिक चुनौतियों से गुजर रहा था। एक पत्रकार के तौर पर उस समय गुजरात की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थीं और अगले कुछ वर्षों में सरकार ने किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी?
1: एक पत्रकार के तौर पे मैंने 7 अक्टूबर 2001 को जब नरेंद्र भाई ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, तब से उनका जो कार्यकाल रहा है आज दिन तक का, उसको बहुत नजदीक से फॉलो किया है। जब गुजरात में नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बन के आए 7 अक्टूबर 2001 को, तब गुजरात भूकंप की छाया से अभी पूरी तरह से बाहर नहीं निकला था। एक रिहेबिलिटेशन और रीबिल्ड करने की एक बहुत बड़ी चुनौती तो सामने थी ही, उसके साथ साथ उसके पहले 1998 और 2009 में कच्छ में जो साइक्लोन आया, उसका भी काफी गहरा असर था। इनस्टेबिलिटी का, एक अनसर्टेनिटी का एक माहौल पूरी तरह से बना हुआ था जब नरेंद्र भाई ने 7 अक्टूबर को शपथ ली। मुझे अभी भी याद है, इसको गुजराती में कहते हैं अपनो गुजरात आगवो गुजरात, मतलब हमारा गुजरात अग्रसर गुजरात। वो नारा देके उसने एक गुजरातियों को एक व्यापक अपील की थी, जिस नारे से गुजरात के एडमिनिस्ट्रेशन से लेके पार्टी में और इन जनरल गुजरातियों में एक नए आत्मविश्वास का संचार हुआ कि ये बंदा कुछ कर सकेगा, ये बंदा कुछ गुजरात को ध्यान में रखते हुए उनके पास कुछ विजन है, उनके पास कुछ गाइडलाइंस है, उनके पास एक स्पष्ट नीति और दिशा है। और तब से जो हुआ, कई सारी योजनाएं आई जिसकी हम आगे बात करेंगे, ज्योति ग्राम, स्वागत, कृषि महोत्सव, गरीब कल्याण मेला से लेके बहुत सारी वाइब्रंट और गिफ्ट सिटी तक कई सारे इनिशिएटिव उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लिए गए। जब से वो 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसकी एक लंबी इम्पैक्ट भी रही। और एक गुजरात मॉडल जो 2010 के बाद स्पेशली 2012 और 13 में जो नेशनली काफी चर्चा में रहा कि गुजरात ने एक डेवलपमेंटल मॉडल पेश किया कि कैसे एक राज्य को डेवलप किया जाता है, और फिर आगे की जर्नी हम सबको मालूम है। लेकिन उसका जो फाउंडेशन है वो शायद 2001, 2 और 3, ये 2-3 सालों में रखा गया था। उसकी नींव है वो 3 सालों में रखी गई थी।
0: डॉक्टर अस्थाना, 2003 की बात करते हैं, जब देश में लोग कंप्यूटर और इंटरनेट सीख ही रहे थे, तब गुजरात में स्वागत पोर्टल आया। सीधे मुख्यमंत्री का जनता की शिकायतें सुनना और ऑन द स्पॉट 99% से ज्यादा मामले निपटा देना। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 607,299 मामले तुरंत निपटारा कर दिए गए थे। आपसे समझना चाहेंगे कि उस दौर के प्रशासनिक रवैये के बीच स्वागत जैसी योजना किस तरह का सरप्राइज था, और इसने ग्राउंड पर अफसर शाही का जो रवैया है कितना बदला और कैसे बदला?
2: जैसा कि केतन जी ने बताया कि 2001 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री और उस समय के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री ने जब शासन की बागडोर संभाली, उस समय जनता को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि कच्छ की जनता और गुजरात की जनता जिस त्रासदी से गुजर रही थी, उस समय प्रशासन से उनकी उम्मीद थी कि जनता की जो शिकायतें हैं उनका निवारण तत्कालीन किया जाए, जवाबदारी के साथ किया जाए, और इस पूरे प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता की जरूरत थी। गुजरात में उस समय जो प्रशासन का जो एक ढांचा था, उस ढांचे में कमी ये थी कि जो जनता की शिकायत थी वो प्रशासन तक आते आते कहीं दब जाती थी, और जो शिकायतों का निवारण करने के लिए एक से अधिक एजेंसी की जरूरत होती थी, वहां जनता की शिकायत का निवारण नहीं हो पाता था। तो इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक प्रयोग किया कि हम जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए हम तकनीकी का सहारा लेंगे, और इस तकनीकी के सहारा से जो प्रशासन है वो एक स्तर पे, गांव के स्तर पे, तालुका के स्तर पे, जिला के स्तर पे और राज्य के स्तर पे सीधे जनता से जुड़ने का उनको एक व्यवस्था मिला। तो ये जो स्वागत की जो योजना है, ये स्वागत की योजना 2003 में लागू की गई थी, और इस योजना का उद्देश्य था कि जनता की शिकायत, खासकर वो शिकायत जिसका निवारण वर्षों से नहीं हो पा रहा है, उसके निवारण को प्राथमिकता के आधार पे अब सरकार उसका निवारण को दूर करे, उनकी शिकायतों को दूर करे। तो ये जब व्यवस्था लागू की गई थी, जैसे आपने कहा कि अभी तक 99% जनता की शिकायतों का हल मिल चुका है और

0: इसका प्रमाण इसी से मिलता है कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और अभी के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो ये पहल शुरू की, इस पहल का गुजरात के अंदर जो प्रभाव पड़ा उसका ये आंकड़ा इसका इम्पैक्ट बताता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यूनाइटेड नेशन ने इसको 2010 में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से, गवर्नेंस के अवार्ड से इसको नवाजा। तो जनता की शिकायतों का हल मिलने लगा, जनता का सरकार के ऊपर विश्वास बढ़ा, सरकार जो है सो सीधे जनता के साथ जुड़ी। और इसका जो प्रयोग जो हुआ, ये प्रयोग जो है सो आज के समय में पूरे देश में इसको अपनाया जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड से इसको नवाजा गया है, साथ में इसको ई गवर्नेंस और पारदर्शिता के लिए भी सुशासन का बड़ा अच्छा मॉडल माना गया है। तो ये जो है वो देश के अंदर प्रशासन की जवाबदारी तय करती है और प्रशासनिक ढांचे में भी कहां कमी है जिसके कारण जनता की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, उन बिंदुओं को चिन्हित करती है और तत्कालिक उसका निवारण करती है। तो ये मॉडल जो है सिर्फ गुजरात में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन आज देश के दूसरे राज्यों में भी इसको अपनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको मान्यता मिली है। तो
1: जी
0: ये एक गुजरात के तरफ से पूरे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका नेतृत्व, इसकी शुरुआत, इसका संचालन और इसका नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था।
1: केतन जी, इतिहास के पन्ने को थोड़ा और पलटें। आपको याद होगा 2000 के शुरुआती सालों में गांव में बिजली का मतलब होता था आ गई तो गनीमत, चली गई तो आदत। फिर आई ज्योति ग्राम योजना, 1100 करोड़ रुपए खर्च हुए और 18,000 से ज्यादा गांव में 24 घंटे बिजली रहने लगी। एक पत्रकार के नाते जब आप उस समय गांव में जाते थे तो इस एक रोशनी की किरण ने वहां के छोटे कारोबारियों और लोगों की जिंदगी को रातों रात कैसे बदल दिया। अगर कोई दिलचस्प वाकया इस ज्योति ग्राम योजना से कोई जुड़ा हो और आपको याद आ रहा हो तो वो भी हमारे श्रोताओं के साथ जरूर साझा करें।
2: पहले मैं ये जो अस्थाना जी ने कहा स्वागत की हम चर्चा कर रहे थे उसके वो कड़ी से एक बात कहना चाहूंगा। जो प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र भाई बने और जो प्रगति प्लेटफॉर्म जो डेवलप किया, हम सबको मालूम है कि देश से जुड़ी हुई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य योजनाओं का एक रेगुलर रिव्यू होता है प्रगति के प्लेटफॉर्म से। मैं मानता हूं कि ये प्रगति एक तरह के उन्होंने मुख्यमंत्री काल में जो स्वागत किया था, हालांकि उसका स्वरूप अलग है, भिन्न है, लेकिन उसका ही एक एक्सटेंशन है कि रिसेंटली लास्ट दिसंबर में ही हमने प्रगति के 50 मीटिंग पूरे होने पर एक कार्यक्रम किया था। तो नरेंद्र भाई एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे कई सारे नए नए उपक्रम के लिए जाने जाते हैं, हमने गुजरात में देखा है। ज्योतिग्राम की जहां तक सवाल है, 2003 में जब ये योजना शुरू हुई उससे पहले गुजरात पानी के साथ साथ बिजली के संकट से काफी जूझ रहा था। गांव में बिजली दे तो एग्रीकल्चर को क्या करे, एग्रीकल्चर को बिजली दे तो रेसिडेंशियल और नॉन कमर्शियल यूजेस है और नॉन एग्रीकल्चर यूजेस है उनको कैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे, ये अपने आप में बड़ी चैलेंज थी। तो ज्योतिग्राम योजना के तहत मुझे याद है कि उत्तर गुजरात के गांव ले लो, सौराष्ट्र के गांव में हम ट्रैवल करते थे तो दिन में 4-4, 6-6 घंटे बिजली नहीं मिलती थी। इवन इन अ हॉट समर के दिनों में भी दिन में 5-6 घंटे बिजली न होना कितना त्रासदी होता है हम सबको मालूम है। गांव की छोड़ो, जो सेमी अर्बन टायर टू सिटीज है उसमें घंटों तक इलेक्ट्रिसिटी कट रहता था। उस हालात में इस सिचुएशन को सिर्फ कोई एक योजना ने बदला है तो वो ज्योतिग्राम है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ज्योतिग्राम योजना के तहत एग्रीकल्चर फीडर को नॉन एग्रीकल्चर रूरल सप्लाई से अलग कर दिया पूरा। तो उससे ये हुआ कि जो हाउस होल्ड और नॉन एग्रीकल्चर रूरल एक्टिविटीज है उनको 24 आवर 3 फेज बिजली मिलने लगी, और जो एग्रीकल्चर के लिए बिजली चाहिए थी वो बिजली का एक सेपरेट फीडर के जरिए प्रावधान किया गया, जब किसानों की जरूरत हो, किसानों को जब चाहिए बिजली तब उनको बिजली मिले, और जब किसानों को बिजली नहीं चाहिए तब बिजली का कोई वेस्ट ना हो उसका भी ख्याल रखा गया।
1: जी हाँ, ज्योतिग्राम योजना के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 3 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को इस योजना से लाभ हुआ और उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला। संकल्प से सिद्धि के इस सफर में आगे बढ़ते हैं। अगला

0: की जिंदगी में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला। संकल्प से सिद्धि के इस सफर में आगे बढ़ते हैं। अगला पड़ाव रहा वाइब्रेंट गुजरात। 2003 में जब पहली बार वाइब्रेंट गुजरात हुआ तो बहुत से लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक सरकारी इवेंट है, लेकिन देखते ही देखते गुजरात सिर्फ कपड़ा या केमिकल का गढ़ नहीं रहा, बल्कि टाटा नैनो से लेकर बड़ी बड़ी ऑटो कंपनियों का हब बन गया। ये एक राज्य से निकलकर ग्लोबल ब्रांड बनने का टर्निंग प्वाइंट भी साबित हुआ। वाइब्रेंट गुजरात पर चर्चा से पहले आइए सुन लेते हैं ये विशेष रिपोर्ट।
1: गुजरात के विकास की कहानी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। इसकी शुरुआत 28 सितंबर 2003 को तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई थी। उस समय इसका उद्देश्य था गुजरात की निवेश क्षमता को दुनिया के सामने रखना और राज्य को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना। पहले संस्करण में करीब 300 अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी शामिल हुए थे। समय के साथ यह आयोजन एक बड़े वैश्विक मंच में बदलता गया। वर्ष 2019 तक इनमें 135 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, यानी एक राज्य केंद्रित निवेश सम्मेलन से शुरू हुई पहल धीरे धीरे वैश्विक कारोबारी और निवेश मंच का रूप ले चुकी थी। वाइब्रेंट गुजरात की यात्रा में जनवरी 2024 में आयोजित 10वां संस्करण भी महत्वपूर्ण रहा। इसका विषय था गेटवे टू द फ्यूचर। इस संस्करण में निवेश के साथ साथ भविष्य की तकनीक, नवाचार, सतत विकास और वैश्विक सहयोग जैसे विषयों पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने इसे गुजरात से आगे बढ़कर भारत के विकास और वैश्विक साझेदारी की दिशा में महत्वपूर्ण मंच के रूप में रेखांकित किया। वाइब्रेंट गुजरात का प्रभाव केवल बड़े निवेश समझौतों तक सीमित नहीं रहा। इस मॉडल के आधार पर क्षेत्रीय स्तर पर भी निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। वर्ष 2025 और 26 में गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित किए गए। जनवरी 2026 में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के सम्मेलन में सिरेमिक, इंजीनियरिंग, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स, ग्रीन एनर्जी, पर्यटन, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 11वें संस्करण का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2027 तक गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। इस वैश्विक सम्मेलन में दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्ष और मंत्री, कॉरपोरेट जगत के नेता, वरिष्ठ नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख और शिक्षाविद शामिल होंगे। जनवरी 2027 में होने वाले इस वैश्विक आयोजन का मुख्य फोकस विकेंद्रित क्षेत्रीय विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और उभरती तकनीकों और विकसित भारत 2047 के व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्य पर होगा।
0: डॉक्टर अस्थाना, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी योजना देश में नहीं थी कि कोई एक राज्य इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात जैसा कोई कार्यक्रम करे और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से वहां कंपनियां आए, इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्ट करें, वहां कंपनी लगाने की बात हो, रोजगार सृजन की बात हो, कैसे देखते हैं? चूंकि आज का जमाना अलग है, आज से 23 साल पहले 2003 में इस सोच के साथ किसी आयोजन को करना और उसमें सफलता हासिल करना बहुत बड़ी उपलब्धि।
2: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2003 में इस तरह की योजनाओं के बारे में सोचना भी अपने आप में दूरदर्शिता का एक घोतक है कि एक दूरदर्शी राजनीतिक व्यक्ति हमारे राज्य को, अभी तो वो देश की कमान संभाल रहे हैं लेकिन उस समय अपने राज्य को किस स्तर पे स्थापित करना चाहते थे, ये उनकी सोच को बताता है। जैसा कि आपको ख्याल होगा कि गुजरात, महाराष्ट्र के साथ गुजरात भी औद्योगिक क्षेत्र में एक सफल राज्य माना जाता है, तो उद्योग धंधा यहाँ के DNA में है, लेकिन ये उद्योग जो है एक क्षेत्र तक सीमित था। जैसे सूरत का कपड़ा उद्योग, सूरत का हीरा का उद्योग या अहमदाबाद का फार्मेसी का उद्योग, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जो है एक विजनरी लीडर थे और उनका शुरू से एक स्वप्न था कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का काम करें। आप सोचिए कि गुजरात राज्य में रह के एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे निवेश को आकर्षित करना एक बहुत बड़ी एक सोच थी, और इसीलिए उस समय कुछ लोग जो उनकी सोच के समक्ष खड़े नहीं रह सकते थे, उन्होंने उनको चैलेंज भी किया, और उसका एक अलग दृष्टिकोण से देखा, लेकिन 2003 से लेकर अगर आज तक

0: आप जो वाइब्रेंट गुजरात का सफर देखें, तो 2003 में जहां पर मात्र 300 डेलीगेटों के साथ ये वाइब्रेंट गुजरात शुरू हुआ था, वहां पे आज जो है सो इसकी संख्या 40,000 तक पहुंच गई है। और विश्व का कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो कि ये वाइब्रेंट गुजरात को अटेंड नहीं करना चाहता है, या वाइब्रेंट गुजरात के द्वारा उसको जो गुजरात के अंदर जो निवेश का मौका मिल रहा है, उस निवेश के मौके को वो चूकना चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि गुजरात के अंदर निवेश करने की बहुत सारी क्षमताएं हैं, और इन्हीं क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने गांव गांव में बिजली पहुंचाई, जल की व्यवस्था की, गुजरात के अंदर जो पोर्ट है उसके सुधारे पे उन्होंने जोर दिया, इसके बाद जो गुजरात के अंदर जो रोड का नेटवर्क है उसके अंदर जोर दिया, प्रशासन के अंदर पारदर्शिता लाई, तो ये सब का जो परिणाम है वो हमें वाइब्रेंट गुजरात के अंदर देखने को मिला। आज के दिन अगर आप बात करें तो वाइब्रेंट गुजरात जो है एक सिर्फ सरकारी योजना नहीं रह के पूरे देश के अंदर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर, केमिकल, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, हर एक क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को खोजने की और उसके अंदर निवेश करने का एक बड़ा उचित प्लेटफॉर्म बन गया है। और इस साल से तो इसका 4 चैप्टर शुरू हो गया है, माने अब ये क्षेत्रीय पहल बन गया है। अभी नॉर्थ गुजरात में, साउथ गुजरात में, मध्य गुजरात में और सौराष्ट्र गुजरात में अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय जो व्यवस्था है, जहां पे क्षेत्रीय रोजगार या जो निवेश के अवसर है उसको, संभावनाओं को तलाशने का ये एक पहल बन गया है। जैसा कि अभी आपने बात की कि कच्छ के अंदर जो 2001 में जो भूकंप आया था और उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी ने जो कमान संभाला था,
1: जी
0: तो आज कच्छ जो इसका सबसे बड़ा लाभार्थी प्रदेश बना है। आज कच्छ के अंदर आप जाके देखें तो आपको विश्वास नहीं होगा कि यहाँ पे कभी भूकंप आया था। इस वाइब्रेंट गुजरात ने इतनी ज्यादा तरक्की के अवसर खड़े किए हैं।
1: सफर को आगे बढ़ाते हैं, एक और महत्वपूर्ण पड़ाव रहा केतन जी, गिफ्ट सिटी। गांधीनगर में जब गिफ्ट सिटी का विचार आया तो 2008 के आसपास दुनिया वैश्विक मंदी से जूझ रही थी। लोग सोच रहे थे कि गुजरात में सिंगापुर या दुबई जैसा फाइनेंशियल हब कैसे बनेगा, और आज जब हम वहां बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को काम करते देखते हैं तो प्रधानमंत्री के उस विजन को किस तरीके से आंकते हैं आप? फिर वही बात कि एक तरफ वैश्विक मंदी थी और दूसरी तरफ गिफ्ट सिटी का विचार, अपने आप में विरोधाभास जरूर था, लेकिन कह सकते हैं कि वो दूरदर्शिता ही थी जो इसे न सिर्फ मुकम्मल कर पाई बल्कि सफलता के नए अध्याय भी जोड़ पाई।
2: जब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गिफ्ट सिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी हब बनाने का कॉन्सेप्चुलाइज हुआ और GIFTCL इनकॉर्पोरेटेड हुई 21 जून 2007 को, तब से शुरू के दिनों में बहुत लोगों को ये लगता था कि गुजरात अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में, जहां आज ये पूरा डेजर्ट जंगल एरिया है साबरमती नदी के किनारे पे, वहां क्या होगा, बड़ी कंपनियां यहाँ क्यों आएगी, जब हमारे पास मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे बड़े मेट्रो शहर है उसको छोड़ के, और स्पेशली जब मुंबई नजदीक है और देश का फाइनेंशियल हब है तो उसको छोड़ के ग्लोबल कंपनियां यहाँ क्यों आएगी, यहाँ ना तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना तो कुछ है। तो शुरू में जब नरेंद्र भाई ने ये अपना विजन प्रस्तुत किया तब बहुत सारी दुविधाएं थी, लोगों के मन में सवाल था, लेकिन आज 2026 में यदि आप गिफ्ट सिटी की मुलाकात लोगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से लेके बहुत सारी टेक कंपनियां, वर्ल्ड में जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनका एक एकम गिफ्ट सिटी में प्रेजेंस है। नरेंद्र भाई खुद एक स्टेट के सीईओ के तौर पे गिफ्ट सिटी का मार्केटिंग कर रहे थे, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बातें कर रहे थे, उनको गुजरात आने का न्योता दे रहे थे, जो भी सुविधा उनको चाहिए थी वो सुविधा उपलब्ध कराने का वादा कर रहे थे। 2014 में जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने तब से जाके उसकी जो स्पीड है डेवलपमेंट की वो काफी हद तक बढ़ी है, और आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, उनके सबके इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ काम कर रहे हैं, 2-3 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज डिकिन से लेके काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज अपना कैंपस गिफ्ट सिटी में लगाए बैठी है। तो कुल मिला के ये जो पूरा पूरा प्लांड एक फिनटेक सिटी है, वो फिनटेक सिटी उभर के आ रहा है गुजरात और अहमदाबाद में। इनके साथ साथ उनको रेल कनेक्टिविटी मेट्रो के जरिए दी गई है, अलग से प्रावधान किए उनके लिए काफी कुछ। एयर कनेक्टिविटी भी आगे आने वाले सालों में डायरेक्ट गिफ्ट सिटी से देने की एक संभावना भी सोची जा रही है।

0: तो शुरू में केवल एक स्वप्न लगता था, आज वो सबके सामने एक हकीकत बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। और वाइब्रेंट गुजरात समिट जब 2024 में आयोजित हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट सिटी को लेकर अपने मन के विचार लोगों के साथ साझा किए।
2: गिफ्ट सिटी में हमारे होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का प्रतिबिंब दिखता है। यहाँ केंद्र, राज्य और IFSC अथॉरिटी मिलकर काम करते हैं ताकि दुनिया का बेस्ट रेगुलेटरी एनवायरमेंट तैयार हो। हमें इसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल मार्केट प्लेस बनाने का प्रयास तेज करना चाहिए।
1: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अस्थाना, सौराष्ट्र की थोड़ी चर्चा कर ली जाए यहाँ पर। सौराष्ट्र में पानी की समस्या तो जग जाहिर थी, सूखा और पलायन वहां की नियति थी। सोनी योजना में खुली नहरें बनाने की बजाय 1100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाकर 115 बांधों को नर्मदा के पानी से भर दिया गया। उस समय ये सुनने में और वहां के लोगों को महसूस करने में थोड़ा आश्चर्यचकित जरूर कर रहा था, लेकिन एक पॉलिसी एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या मानते हैं, जमीन अधिग्रहण की झंझटों से बचाकर पाइपलाइन बिछाने का ये फैसला जल प्रबंधन के क्षेत्र में कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ?
3: जी, ये नरेंद्र भाई मोदी जी का फिर से एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम और बहुत ही साहसिक कदम था, क्योंकि सौराष्ट्र की जो जिले थे जिसमें राजकोट, जामनगर, मौरवी, भावनगर, सुरेंद्रनगर, अमरेली, जूनागढ़ आता था, इसमें हमेशा पीने के पानी की त्रासदी रहती थी। पीने के पानी के अलावा वहां के जो किसान थे उनको भी अपनी खेती के लिए उचित मात्रा में सिंचाई के लिए पानी का व्यवस्था नहीं हो पाता था। इधर जो साउथ गुजरात और मध्य गुजरात तक जो नर्मदा का पानी आ चुका था, इसका लाभ सौराष्ट्र के क्षेत्र तक पहुंचाना अपने आप में एक चुनौती थी, क्योंकि जब जमीन अधिग्रहण की बात चलती थी तो उस समय बहुत सारे प्रशासनिक दुविधाएं आती थी, बहुत सारे लिटिगेशन आते थे। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि चूंकि हमें पीने का पानी, क्वालिटी वाला पानी हमें लोगों तक पहुंचाना है, इसलिए वहां पे पाइपलाइन का मदद लिया गया। लेकिन अगर आप उस क्षेत्र के जो भौगोलिक स्थिति के अगर आप एक अवलोकन करें तो ये अपने आप में एक तकनीकी एक चुनौती थी कि कैसे बिना किसी के जमीन का अधिग्रहण किए हुए हम शुद्ध पानी, पेयजल को हम लोगों तक पहुंचाएं। तो ये जो सुनई योजना थी जिसमें 1371 किलोमीटर नहरों को और 115 बांधों को जोड़ा गया और पीने का शुद्ध पानी इन राज्यों तक, इन जिलों तक पहुंचाया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन जैसे कि केतन भाई ने भी कहा और आपने भी अपने उद्बोधन में से चिन्हित किया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक उनका कैरेक्टरिस्टिक्स था कि वो हमेशा नई पहल को वो जोड़ देते थे कि कुछ नया करना है। वो तकनीकी को अपनाने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे और कोई भी काम जो है वो वैश्विक स्तर पे करना चाहते थे कि इसका एक जो इम्पैक्ट हो वो इम्पैक्ट पूरे लोगों तक मिले, पूरे राज्य को मिले, पूरे बड़े भूभाग के लोगों को मिले। तो ये जो लिंक योजना थी जिसके अंतर्गत सौराष्ट्र को जल सुरक्षा दी गई और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में पानी पहुंचाया गया, इससे वहां पे कृषि को बढ़ावा मिला, इससे वहां पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में नल के द्वारा पीने लायक पानी पहुंचाया गया, तो काफी ज्यादा लोगों को वहां पे फायदा हुआ है।
1: जी बिल्कुल। केतन जी, एक बार फिर थोड़ा पीछे चलते हैं। 2003 गर्मी का मौसम, जून की तपती दोपहरी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और वरिष्ठ IAS अधिकारियों के साथ गुजरात के गांव गांव में जाते हैं। लग्जरी गाड़ियों में नहीं, पैदल घूमते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि आप अपनी बच्चियों को, बेटियों को स्कूल जरूर भेजें। और जब स्कूल में वो बच्चियां आती हैं तो उन्हें खिलौने, मिठाई, बैग देकर उनका हौसला बढ़ाया जाता है ताकि जो स्कूल का डर था मन में वो डर न रहे। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उनको उपहार मिला करते थे, गिफ्ट मिला करते थे बतौर मुख्यमंत्री, उनको ऑक्शन में सेल आउट करके जो पैसे आए उससे एक योजना शुरू की और योजना का नाम था कन्या केलावणी योजना। कैसे देखते हैं इस पर्सनल टच को और क्या मानते हैं आप कि इससे जो बेटियों के स्कूल छोड़ने, जिसे ड्रॉप आउट रेट कहते हैं, इसमें जो ड्रास्टिक चेंज आया उसमें कितनी बड़ी भूमिका थी इस पर्सनल टच की?
0: आपने जिस बात का जिक्र किया कि मुख्यमंत्री के तौर पे वो जब कोई फंक्शन में जाते थे और उनको जो उपहार दिया जाता था, वो नॉर्मली ऐसा होता है कि वो सब स्टेट की जो ट्रेजरी है, जो तोशाखाना बोला जाता है, उसमें जमा करवाना होता है। लेकिन आज तक परंपरा यही चलती रही थी कि किसी को कुछ पता रहता नहीं था कि तोशाखाना

0: खाना में क्या हुआ क्या नहीं, कितनी चीजें आई, उसका बाद में क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं था। ये पहली बार हुआ कि नरेंद्र भाई ने ये सब उपहारों, और जब खुद मुख्यमंत्री अपने को मिले हुए उपहारों को ट्रेजरी में जमा करवाते हैं, तो ऑटोमेटिकली मंत्रीज और सेक्रेटरीज भी उसको फॉलो करने लगे। तो बहुत सारी चीजें ये तोशाखाना में आने लगी और उसका एक ऑक्शन होने लगा। चीजें सिंबॉलिक थी, लेकिन ऑक्शन में जो बड़े बड़े लोग आते थे वो उनका कोज देख के उनको खरीदते थे, कि उनका कोज ये था कि इनमें जो इनकम होगी वो इनकम गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्पेंड की जाएगी। नरेंद्र भाई ने लोगों को प्रेरित भी किया कि आप ये उपहार चीजें ऑक्शन में खरीदे, ऊंचे दामों में खरीदे, ताकि ये फंड में ज्यादा रकम आए और वो रकम हम एक कोज के लिए, कन्या केड़वनी के लिए हम स्पेंड कर सके। मुझे बराबर याद है कि एक बार जब मैंने उनसे इसी विषय पर साक्षात्कार किया था, तब उन्होंने कहा था कि ये गर्ल्स एजुकेशन मेरे दिल को छूता हुआ एक विषय है। मतलब आपने जो पर्सनल टच की बात की वो यही कनेक्ट होती है। उन्होंने कैटेगरिकल कहा था कि बहुत सारी योजनाएं तो सरकारी तौर पर चलती रहेगी, लेकिन बच्ची को पढ़ाना, बच्ची को स्कूल ले जाना और उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करना, उसको बच्ची स्कूल तक आए, क्योंकि ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा था उस समय, गर्ल्स ड्रॉप आउट रेशियो, तो उनको ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करे, वो मेरे लिए मेरे दिल को छूने वाली बात है। उनके दिल से काफी करीब ये विषय था, और इसीलिए उन्होंने ये हर साल कन्या केलवनी उपक्रम शुरू किया। गांव गांव जाने लगे, उसका मंत्रियां और बड़े बड़े अफसर भी जाने लगे। नो डाउट उसको फिर गर्ल एजुकेशन के बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने काफी सारे, बहुत सारे इनिशिएटिव और भी लिए, लेकिन ये उपक्रम था उसके, उसने उसकी नींव रखी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि बतौर मुख्यमंत्री उनको 12 साल में जो सैलरी मिली थी, वो सारी रकम प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने खुद ने अपने लिए खर्च नहीं किए, वो सारी रकम उन्होंने कन्या केलवनी के लिए डोनेट कर दी थी। तो ये बताता है कि ये विषय उनके दिल से कितना करीब था, और वो एक इमोशनल टच दे रहे थे इन उपक्रम को।
1: गुजरात में कन्या केलावणी की उन्होंने शुरुआत की, और जब देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी आरंभ
0: जी,
1: किया, जो आज
0: बिल्कुल
1: पूरे देश में बहुत लोकप्रिय है। डॉक्टर अस्थाना, थोड़ी चर्चा किसानों की भी कर लेते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि सूखा ग्रस्त जो इलाका होता है, जो सूखा ग्रस्त राज्य होते हैं, वहां खेती का विकास बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको याद होगा 2005 गुजरात ने कृषि महोत्सव का आयोजन किया, और वहां हमने देखा कि एसी कमरों में बैठने वाले वैज्ञानिक और पूरी सरकारी मशीनरी चिलचिलाती धूप में सीधा किसानों के खेतों तक पहुंच गई, और इस एक पहल ने गुजरात के कृषि विकास दर को डबल डिजिट में पहुंचाने का करिश्मा कर दिया। क्या थी रणनीति और कैसे उसे जमीन पर इम्प्लीमेंट किया गया?
2: जी, बहुत ही अच्छा आपने एक प्रयोग जो गुजरात के उस समय के जो मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जो किया गया 2005-06 में, उसका आपने बहुत ही अच्छा जिक्र किया। जैसे मैंने आपको कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का एक पहल रहता था कि कुछ नया किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिसका इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों पर पड़े। उद्योग के साथ गुजरात की कृषि को भी विशेष महत्व दिया गया सरकारी योजनाओं में, और जैसा कि अभी हमने पिछली चर्चा में देखा कि बिजली की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण बहुत सारे कृषि जो क्षेत्र थे वहां पे कृषि का सही उपयोग या सही दिशा में उनका बढ़ोतरी नहीं हो पा रहा था। इसलिए सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया जिसका मूल मंत्र था कि अब कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी सरकारी महकमे हैं उनके अधिकारी किसानों तक पहुंचेंगे, किसानों के गांव तक जाएंगे, न कि किसान जो है सो इन चीजों का लाभ लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाए। तो ये जो सरकार जो है वो जनता के दरवाजे तक पहुंचे, इसके पहल के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में ये एक अनूठा प्रयास था।
1: इस अनूठे प्रयास ने न सिर्फ गुजरात की कायाकल्प की, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर भारत के कई गांवों जो सूखे से परेशानी में थे, उनका भी परिवर्तन हुआ। 25 वर्षों का ये सफर हमें सिखाता है कि जब शासन में विजन हो, नीतियों में स्पष्टता हो और क्रियान्वयन में पारदर्शिता हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी प्रगति के अवसर में बदला जा सकता है। गुजरात का ये विकास मॉडल आज केवल एक राज्य का अनुभव नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विकसित भारत के सपने की सबसे मजबूत रीढ़ है। केतन जी आपका, डॉक्टर स्थाना आपका।

0: विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारी नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. अस्थाना। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप का नंबर है 9289094044।
4: நேர்களே, கேட்ட இந்த நிகழ்ச்சி முன்னதாக நமது டெல்லி வானொலி நிலையம் இன்றிரவு 7:10 ஒலிபரப்பியதின் ஒளிப்பதிவு. ஆகாஷ்வாணி புதுச்சேரி வானொலி நிலையம் 10:32 நொடி. வருவது தேன்மழை.

0: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi today positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said, the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet this need. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating 5th edition of Semicon India at Yashobhumi in New Delhi.
1: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है भारत की एस्पिरेंस आपके सामने